एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत सन 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 21 अक्टूबर सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अल्पर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाले कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश सतिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश

0: वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिक के आधार पर काम करे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा चौनी और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया केफेन और झांग शू शियांग से होगा। वही हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम की भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदनवार।

金刚。भगवान महावीर का कथन है, तुम सुवर की से पढ़ना हर मनुष्य का कर्तव्य है, यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। भक्ति संगीत

한 위빈 마르티스를 이기 제로카 순위에 위빈 마르티스의 아지 능발 불사리 토니발리카리 그루카리 부족하 제프티 바드 앞서는 게 시랑차리 보네스카 안나지 바그도 소사다시 संगीत संगीता कार्यक्रम में इन दिन चल रही है श्रृंखला ताल प्रवाह पांचवी कड़ी सुनाई जाएगी कलाकार है पंडित कालीनाथ मिश्र ये कार्यक्रम सुबह और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है सुबह 7 बजे भोली भक्ति गीत 7:30 पर अंधेर रही प्यार के सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी लेखक मिलिंद सबनीस प्रस्तुति ऋषि पाठक 8:30 पर चित्रलोक 9:30 पर आज के पत्रकार कार्यक्रम अभिनेत्री अरुण ईरानी पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम रात 9:30 पर भी सुना जा सकता है सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश 11 बजे रंगकरण 12:05 पर यादों की बिल्ली सुरीला सफर दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष 2:15 पर समाचार 2:30 पर सदाबहार लखनऊ 3 बजे सखी सहेली 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों हरी कहानी आज की कहानी है तितलियों के देश में उर्मिला शिरीश की ये कहानी ममता सिंह का वाचक स्वर राघवेंद्र सिंह नेगी की प्रस्तुति शाम 5 बजे छाएगी 5:30 पर तराने नए पुराने 6:35 पर संध्या रंग

की सातवीं कड़ी। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत झलकी विदेशी समधी। एस अतहर अली ने इसे लिखा है, निर्देशक मीनाक्षी मिश्रा। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर केंद्रित। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11

0: बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग का रंग। हम आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सुन सकते हैं। इसके अलावा विविध भारती के कार्यक्रम DTH पर उपलब्ध हैं और एलेक्सा डिवाइस पर भी अब आप विविध भारती का आनंद ले सकते हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के रसिक श्रोताओं, मैं रामकृष्ण दास इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं श्री कालीनाथ मिश्रा जी। आज कुछ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मिश्रा जी। अभी तक तो हम केवल क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे थे। भारत में लोक गीत और धुन की भी भरमार है। कुछ ताल ताल प्रवाह है, कुछ ताल जो लोकगीत में ज्यादातर प्रयोग होते हैं उसमें है दादरा, कहरबा और चाचर, दीपचंदी। तो मिश्रा जी, आज आप कौन सा ताल लेके आगे बढ़ेंगे?
2: आज ताल प्रवाह को हम एक उमंग देते हैं, दादरा ताल।
1: क्या बात!
2: दादरा में वो भी एक अंदाज है, लोगों को बड़ा खुश रखता है वो ताल। उसमें सोलो बहुत कम बजाते हैं लेकिन लग्गियां बजती हैं, लग्गी लड़ी होती है।
1: वाह!
2: हमारे आप उठा के जब जाएंगे कई साल पीछे तो आपको बहुत से गाने आपको दादरा मिलेगा। और पहले तो देखिए बनाने वाले ने कैसा बनाया कि दादरा तीन शब्द में आते हैं।
1: आप फिल्म म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: क्या कहने?
2: दादरा तीन शब्द का बनता है और उसका नाम भी है दादरा और चलन है उसका छह मात्रे का,
1: तीन दुनी छह।
2: जी, तो उसमें हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे चौरसिया जी, फारूक भाई, ऐसे बहुत से कलाकार पहाड़ी धुन या धुन बजाते हैं तो दादरा में उसका एक अंदाज। और दादरा से लग्गी बजाते समय हम कहरवा में कैसे जाते हैं उसका भी अंदाज हम आपको एक झलक दिखाएंगे। तो सुनने वाले श्रोताओं को मैं कालीनाथ मिश्रा आज फिर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ताल प्रवाह के इस कड़ी में हम आते हैं दादरा को लेके, और बहुत से इसमें गाने जो उपयोग किए हैं दादा, मैं आपको थोड़ा गुनगुना के बताऊंगा।
1: जरूर।
2: तो प्रस्तुत है दादरा, फारूक भाई।

ये देखिए जो अभी सुर लगा रहे, एक बात बताऊं कि हमें ताल में हमें सुर का ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, ताल को विशेष मानते हैं, लेकिन अभी जो वो बजा रहे हैं उसमें एक ऐसा अंदाज दे रहे हैं कि एक अलग ही पैटर्न है उसका, एक अलग अंदाज है दादरा का कि कहीं भी आप जा सकते हैं। क्या बात है, अब ये बनारस का स्टाइल उठाने का, बनारस का उठा

0: इसमें बहुत से गाने भी हैं, फिल्मी गाने भी हैं, जैसे थोड़ा सुर अलग लग रहा है, उजाला है राग पहाड़ी में है, वो दादरा ताल में है, लता दीदी ने गाया है, शंकर जयकिशन। ओ मुराना दान बाल मा न जाने दिल की बात, थोड़ा सुर अलग है लेकिन प्योर दादरा है। अब इसमें लग्गी कैसे बजेगा फारूक भाई?
1: सिर्फ लग्गी के सिलसिले में एक बात मैं जानना चाहूंगा, दादरा जब गाया जाता है तो उसमें दादरा में भी लग्गी बजती है और कहरबे में भी बजती है,
0: जी
1: तो दोनों का बताइए,
0: दोनों का अंदाज बजाता हूँ
1: जी।

0: अच्छा, लग्गी के साथ लड़ी भी बजती है, वो क्या चीज है?
1: वो उसी का एक अंदाज है कि जो हम लग्गी में जब जाते हैं धाती नाकर तक थे ना, तो उसके पलटे जो होते हैं उसकी एक लड़ी होती है।
0: अच्छा,
1: कम से कम चार पांच लड़ी जब बजाएंगे तब वो जाके लड़ी कहलाएगी।

0: ये एक अंदाज है। तो दास बाबू, दादरा एक ऐसा चलन है, एक ऐसा ताल है कि बहुत सी गाना इसमें, बहुत गाने पॉपुलर हैं। अगर उसको हम देखने जाएंगे तो ताल प्रवाह में हमको कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। एक बड़ा सुंदर गाना है, मोरा नादान बालमा न जाने दिल की बात, गाया हुआ है लता दीदी का, फिल्म है उजाला, राग पहाड़ी पे है।
1: अच्छा।
0: और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन साहब हैं।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का अपना दोस्त सावन कुमार में लेकर आ गया आप सभी का अपना कार्यक्रम नमस्कार अलवर। साथियों, हमेशा की तरह मैं हूं बहुत ही अच्छे से, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स का मजा ले रहे होंगे, इसके साथ अपने जीवन में कुछ ना कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक कर रहे होंगे। अब देखिए, उत्सवों का माहौल चल रहा है, अभी हम 15 अगस्त मना करके चुके हैं और अब रक्षाबंधन आने वाला है। तो साथियों, उत्सवों का माहौल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, जीवन के अंदर खुशियाँ आती रहनी चाहिए और जीवन के अंदर कुछ पल ऐसे व्यक्ति को मिलने ही चाहिए कि जिनके अंदर वो एंजॉय कर सके, अपने जीवन को अच्छे से जी सके। खैर देखिए साथियों, ये तो एक बात है, लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ ध्यान दिया हो आजकल के समय के बारे में, तो देखिए आज का जो समय है ना, इसके अंदर जब भी हम आसपास में अपने देखते हैं, तो चाहे आप अपने पास पड़ोस में देख लें, चाहे आप अखबारों के अंदर देख लें, या फिर आप टीवी को भी देखते होंगे, तो हमेशा आप एक खबर को बहुत ज़्यादा कुछ एक विषय से जुड़ी हुई खबरें आप अमूमन पाते होंगे, चाहे वो अपने पास पड़ोस की बात कर रहे हैं, चाहे अखबार और टीवी की। और वो खबर होती है साथियों धोखाधड़ी की, और धोखाधड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, धोखाधड़ी साइबर क्राइम से संबंधित, यानी कि साइबर क्राइम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों के सामने आजकल आती हैं। समय इस तरीके का हो चुका है, हर 4-5 घटनाओं को छोड़ करके और फिर वापस से ये जो घटनाएं हैं वापस घूमने लग जाती हैं, हर 4-5 दिन के बाद में फिर एक नई घटना सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि आदमी बहुत, चाहे कितना भी समझदार हो, उसके बावजूद आदमी इन चीज़ों के जाल में फंस ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और ये जो साइबर क्राइम है ये क्या है, और साइबर सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए आज के कार्यक्रम के अंदर इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो समय है ना वो डिजिटल क्रांति का समय है, ये हम सभी लोग जानते हैं। सुबह उठकर आपको बैंक बैलेंस चेक करना हो, या फिर रात का खाना ऑर्डर करना हो, या फिर हमारी दिनचर्या का कोई भी अहम हिस्सा आप ले लीजिए, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों से जुड़ चुका है। आज एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको कि हम बिना इंटरनेट के कर रहे हैं। पहले हमें खाना लेकर के आना होता था, तो हम मान लीजिए रेस्टोरेंट से जाना है, होटल पे जाना है, तो हम लोग पहले वहाँ पे जाया करते थे, लेकिन आज तो हर चीज़ हमारे मोबाइल के अंदर आ चुकी है। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, सारी चीज़ें, अगर हम बात करें शासन और प्रशासन की, तो वो भी पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। तो समय बहुत चेंज हुआ है, दुनिया बहुत बदली है, लेकिन इस डिजिटल सुविधा के साथ में एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है, और वो है साइबर अपराध का। जैसे जैसे हमारी निर्भरता जो है ना वो तकनीक पर बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी निजी और संवेदनशील जानकारी चोरी होने का खतरा जो है वो भी बढ़ता ही जाता है। ऐसे में साइबर सुरक्षा केवल IT विशेषज्ञों का अब विषय नहीं रह चुका है, बल्कि ये हर आम नागरिक की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, और हमें इसके बारे में जानना चाहिए ये क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सरल शब्दों में आपको बताएं तो साइबर सुरक्षा वो प्रक्रिया, तकनीक, यार

या फिर अभ्यास है जिसका उपयोग आप कंप्यूटर सर्वर मोबाइल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेटवर्क और डाटा को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए करते हैं। जिस तरह से हम अपने घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे पर ताला लगाते हैं और गेट पर चौकीदार को रखते हैं, उसी तरह से डिजिटल दुनिया में अपने डाटा बैंक खाते सोशल मीडिया प्रोफाइल और निजी जानकारी को चोरों और हैकर्स से सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाता है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य 3 सिद्धांतों पर काम करता है जिन्हें हम CIA ट्रायड कहते हैं। इसके अंदर अगर पहली बार नंबर पर बात करें तो होती है गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी। केवल सही व्यक्ति तक ही डाटा पहुंच सके, जैसे कि पता जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव ना कर पाए। और तीसरे नंबर पर आती है अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, जब जरूरत हो तब अधिकृत व्यक्ति को डाटा या सेवा आसानी से मिल सके। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बात कर रहे थे डिजिटल सुरक्षा के विषय में, साइबर सुरक्षा क्या होती है, इस डिजिटल युग में क्या आवश्यकता है। तो देखिए साथियों, आज का जो डिजिटल युग है ना, इसमें डेटा को क्या कहा जाता है, तो डेटा को एक नया नाम दिया गया है, इसको कहा गया है नया तेल। जी हाँ, पहले हम लोग तेल के नाम पर पेट्रोल डीजल वगैरह इन चीज़ों को जानते थे, लेकिन डेटा को आज की तारीख में नया तेल कहा जाता है। जिसकी पहुँच डेटा तक होगी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें कि किन वजहों से है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि निजी डाटा की सुरक्षा। आपके मोबाइल में आपकी तस्वीरें, मैसेज, बैंक डिटेल्स और लोकेशन जैसी कई जानकारियां होती हैं, सुरक्षा के बिना ये किसी भी समय पर लीक हो सकती हैं। वहीं ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग से डिजिटल वित्तीय ठगी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मजबूत सुरक्षा ही आपके पैसों को सुरक्षित रखती है, तो वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव जो है, इसके लिए भी वो जो डिजिटल सुरक्षा है वो आवश्यक है। वहीं अगर हम देखें तो कंपनियों के पास उनके ग्राहकों की जानकारी, ट्रेड सीक्रेट्स और वित्तीय डेटा होता है। एक साइबर हमला किसी भी कंपनी को रातों रात कंगाल भी बना सकता है, इसलिए ये सुरक्षा बहुत आवश्यक है। वहीं राष्ट्र सुरक्षा की यदि बात करें तो आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं है साथियों, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़े जाते हैं। किसी देश के पावर ग्रिड, रक्षा प्रणाली, संचार नेटवर्क या बैंकिंग सिस्टम को हैक करके पूरे देश को भी ठप किया जा सकता है, इसलिए साइबर सुरक्षा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर हम प्रमुख साइबर खतरों को देखते हैं, साइबर अपराध जो हैं उनके प्रकार को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि साइबर अपराधी नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आम लोगों और संगठनों के सामने आने वाले बहुत सारे साइबर खतरे जो हैं वो हम लोगों के सामने कुछ पैटर्न के अंदर आते हैं। तो अगर हम उनमें सबसे पहले नंबर पर बात करें तो बात आती है फिशिंग की। आप लोगों ने इस चीज़ का नाम सुना होगा, ये साइबर अपराध का सबसे आम रूप है। इसमें हैकर्स आपको किसी जानी मानी कंपनी, बैंक या सरकारी संस्था के नाम से फर्जी ईमेल, SMS या व्हाट्सएप मैसेजेस को भेजते हैं। इनमें एक लिंक होता है जिस पर आपने क्लिक किया, उससे आपकी लॉगिन ID, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स जो है वो मांगी जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है मेलवेयर और रैंसमवेयर। मेलवेयर जो होता है वो एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ये वायरस होता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या डेटा को चुराने के लिए बनाया जाता है। वहीं रैंसमवेयर जो है ये खतरनाक मेलवेयर होता है। ये आपके कंप्यूटर की सभी फाइलों को लॉक कर देता है और फिर उनको खोलने के बदले आपसे भारी रकम जो होती है, फिरौती वगैरह, इनकी मांग करता है। अब सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें ना साथियों, तो देखिए साइबर अपराधी लोगों के मनोविज्ञान का फायदा जो है ना वो सबसे ज़्यादा उठाते हैं। वो डर, लालच या उत्सुकता पैदा करके आपसे आपकी गोपनीय जानकारी को उगलवाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तुरंत ही OTP शेयर कर दीजिए। इस तरीके की चीज़ों को बता करके वो आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप उनके झांसे में आ जाएं। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस तरीके के झांसों में आ भी जाते हैं। स्कैमर्स लोगों को फर्जी QR कोड भेजकर या फिर ये कहकर के पैसे ठगते हैं कि पैसे प्राप्त करने के लिए अपना UPI पिन दर्ज करें। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी UPI पिन की आवश्यकता नहीं होती है। सोशल मीडिया पर किसी भी फर्जी प्रोफाइल बनाना, किसी के नाम का गलत इस्तेमाल

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं

0: करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो साथियों, अभी हमने जाना कि साइबर सुरक्षा की आवश्यकता किस वजह से पड़ती है। अब इसके बाद में बात आ जाती है कि साइबर सुरक्षा के मुख्य प्रकार क्या होते हैं। तो साथियों, साइबर सुरक्षा कोई एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये कई परतों में काम करती है। इसके अंदर 3-4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम मुख्य रूप से रख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आता है नेटवर्क सुरक्षा, दूसरे नंबर पर आती है एप्लीकेशन सुरक्षा, तीसरे नंबर पर आता है डेटा सुरक्षा, चौथे पर क्लाउड सुरक्षा और पांचवें पर मोबाइल सुरक्षा। अब देखिए, ये तो हो गया बिल्कुल क्लिष्ट सिस्टम, जिसको कि मतलब ज्यादा कठिन, इसको अगर इसके अंदर हम घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर इतना क्या है कि हम लोगों को इतना ज्यादा आसानी से समझ में नहीं आ सकेगा। तो बात करते हैं कि डिजिटल सुरक्षा के लिए व्यवहारिक उपाय क्या हो सकते हैं। तो इन चीजों में ना घुस करके हम व्यवहारिक उपायों पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो साथियों, साइबर हमलों से बचने के लिए किसी भी बड़े तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। केवल थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता को रखकर आप 90% से अधिक साइबर हमलों से बच सकते हैं। अगर हम कुछ मुख्य उपायों के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले नंबर की जो चीज होती है ना, वो होती है आपका मजबूत पासवर्ड और पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना। कभी भी 1 2 3 4 5 6 या फिर पासवर्ड PASSWORD या फिर अपना नाम या जन्मतिथि पासवर्ड के रूप में कभी ना रखें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पासवर्ड के अंदर अक्षर कैपिटल और स्मॉल, इसके अलावा संख्याएं और विशेष वर्ण जैसे कि @ सेमीकोलन कॉलन जो डॉलर साइन है, इन सभी चीज़ों का मिश्रण बना करके और अपने पासवर्ड को सेट कीजिए। हर अकाउंट के लिए आप अलग पासवर्ड रखिए। इसके बाद आता है 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को सक्षम करें। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होती है। जब आप पासवर्ड डालेंगे तब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बिना आपको अकाउंट जो है वो कोई भी लॉगिन कर ही नहीं पाएगा। इससे अपने ईमेल पर, सोशल मीडिया पर और बैंकिंग ऐप्स पर आप तुरंत चालू कीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन है उन सभी को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में सुरक्षा खामियों को ठीक करने वाले सॉफ्टवेयर पैचेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात आती है कि किसी भी अज्ञात ईमेल, SMS या WhatsApp संदेश में आए संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक मत करिए। विशेषकर अगर कोई मैसेज आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने का लालच दे रहा हो, डरा रहा हो, और रेलवे स्टेशन हो गए, कैफे हुए और एयरपोर्ट हुए, यहाँ पर जो फ्री वाईफाई आपको मिलता है, यहाँ पर कभी भी आप ऑनलाइन बैंकिंग या संवेदनशील प्रकार का जो लेन देन होता है उसको करने से बचें। सार्वजनिक वाईफाई जो नेटवर्क होता है, इसमें डाटा बहुत ही ज़्यादा आसानी से हैक किया जा सकता है। केवल आधिकारिक ऐप का ऐप स्टोर जो है उनका उपयोग कीजिए। मोबाइल में ऐप्स हमेशा आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करने चाहिए। कभी भी किसी वेबसाइट से सीधे मत कीजिए और .apk फाइल्स को कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण डेटा और फाइलों को नियमित रूप से आप बाहरी हार्ड ड्राइव या फिर क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप लेते रहने की जो चीज़ है, इस आदत को अपने जीवन में उतारिए। इससे रैंसमवेयर जैसे हमले की स्थिति में आपका डेटा जो है वो कभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। अब साथियों, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति क्या है और कानून क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

तो साथियों, हम लोगों ने बात की कि साइबर सुरक्षा आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यावहारिक उपाय हैं जिनको अपना करके साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, थोड़ी सी जानकारी करने की आवश्यकता है। अब साथियों, बात आती है कि भारत में साइबर सुरक्षा की क्या स्थिति है और इससे संबंधित कानून क्या क्या है। देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्या होती है, साइबर सुरक्षा है क्या। अब इसके बाद में हम लोगों ने अपने बहुत व्यवहारिक उपाय भी अपना लिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सब कुछ उपायों को अपनाने के बावजूद किसी के साथ यदि ठगी हो भी जाती है तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी कि IT एक्ट 2000। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए ये प्राथमिक कानून है। इसमें हैकिंग, डाटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए सख्त सजाओं का प्रावधान है। दूसरे नंबर पर आता है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। यह गृह मंत्रालय की एक पहल है जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्रीय मंच को प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। यदि आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप तुरंत ही शिकायत को cybercrime.gov.in पर दर्ज करवाइए। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है हेल्पलाइन का नंबर 1930-1930। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपने पैसों को ब्लॉक करा सकते हैं। तो साथियों, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं उससे पहले ये गीत।

सुरक्षा के बारे में बात की। देखिए, हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीक आई है, लेकिन इसका सही और सुरक्षित उपयोग करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सुरक्षा केवल सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है, यह हमारी सोच और व्यवहारिक सावधानी पर निर्भर करती है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम है, सजग रहें, सतर्क रहें। अब साथियों, देखिए, आप सभी से बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन वही बात है कि अब घड़ी की सुइयां फिर से इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर से आपसे ले ले विदा तो जा रहे हैं, इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात किसी और दिन इसी समय पर। तब तक के लिए अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार अलवर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज का पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान और साथियों की आवाज में फिल्म दिल से। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत से संवारने का काम किया है एआर रहमान ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये गीत आपने सुना चित्र सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म अशोका से, शब्द रचना रही गुलजार की और संगीत दिया अनु मलिक ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: हाईवे फिल्म से ये गीत आपने सुना, ए आर रहमान और साथियों की आवाज में। शब्द रचना रही इरशाद कामिल की और संगीत दिया ए आर रहमान ने।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

आनंद मिलन का संगीतबद्ध किया और समीर का लिखा ये गीत आपने सुना चंदना दीक्षित, अभिजीत और साथियों की आवाज में फिल्म कूली नंबर वन से। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं गुप्त फिल्म से, आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की, संगीत दिया है विजु शाह ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

विजु शाह का संगीत बुज किया और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म गुप्त से। आवाज रही अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की। अलीजिए फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं ब्रेथलेस से। आवाजें हैं शंकर महादेवन और साथियों की।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य

0: ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने

0: लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पतिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च

0: स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टर्डम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है, और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम

0: उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओ, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते
0: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो
0: जी,
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओ, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा, जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओ, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओ, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओ, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी, क्यों

0: हाँ, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ,
0: तो चलो शुरू करें।
2: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
2: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
4: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
2: हाँ,
5: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
0: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
2: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
5: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
2: जैसे?
0: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
2: बताओ बताओ।
0: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
2: ठीक
0: है। बताओ।
5: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
0: और
4: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छे।
2: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
5: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
2: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास बहुत बड़ी।
0: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
2: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन लेकिन लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
0: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
2: तो,
0: चलिए
2: शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
2: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
3: जीवन सुखद बनाएंगे।
0: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है,

0: पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
1: वाहन चलाते समय तेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
3: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।

0: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
2: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मी और अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
3: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
2: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
4: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
3: अरे आप आदाबर्ज आइए आइए तशरीफ रखिए।
4: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
3: माफ कीजिएगा जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
4: कोई बात नहीं जनाब कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
3: जी बस
4: जी।
2: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
3: जनाब बस जरा सी देर और बस यूं समझिए

0: एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
1: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
2: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने कुछ खाया ही नहीं।
2: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
2: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
2: शब्बा खैर।
1: बला की ठंड है,
2: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
3: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में एआई के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। जयपुर में 19 और 20 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब पर्यटन मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक के माध्यम से भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को नई गति देना तथा सदस्य देशों के बीच पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देना है। उधर आज पुणे में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न विभागों से संबंधित प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी। कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया जाएगा। वित्तीय कार्य के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम संकलन पर चर्चा, मतदान और पारण की कार्यवाही होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित जिलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा का काम जारी है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सवाई माधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जैसलमेर में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सलूम्बर में स्वीप गतिविधियों के तहत दीप जलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने मीडिया को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
1: मीडिया के माध्यम से हम ये सभी को ये कहना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो भी चुनाव होंगे बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कानूनन कार्रवाई करने में किसी का परेशानी नहीं हो। उनसे भी हमारे आह्वान रहेगा कि जो भी नियम है उसकी पालना करते हुए आप अपना चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़े।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारी

0: खिलाड़ियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कल जयपुर में हुई यूएई राजस्थान टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट की राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति से समृद्ध राजस्थान में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी निवेशकों को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बैठक में यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने कहा कि यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। श्री अलमरी ने जयपुर और के बीच हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुबई यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर ये मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार उनका सेवा विस्तार 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। गौरतलब है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने की 31 तारीख को समाप्त हो रहा था। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संवाद करेंगे। इस दौरान विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। वेबिनार का उद्देश्य पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है। जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ पर 3 दिन की 65वीं राष्ट्रीय कार्यशाला कल संपन्न हुई। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में गेहूं और जौ की उत्पादकता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप नई किस्में विकसित करने, रोग और कीट प्रबंधन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर चर्चा हुई।
1: भारत सरकार के द्वारा वो प्रजातियां बनेंगी और कुछ जल्दी ही समय में वो किसानों तक पहुंचेंगी। इनमें से 13 गेहूं की और 11 जौ की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जिनका की प्रपोजल आगे भेजा जाएगा गवर्नमेंट को। छिलका रहित जौ की बात हुई है और उसकी कुछ प्रजातियों को भी चिन्हित किया गया है। गेहूं में भी जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, इस बार हमारा जो देश है उसने 120 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया था और अब उसके गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनके उत्पाद जो बनाए जाते हैं उनके लिए विशेष प्रजातियों का को चिन्हित किया जाए आगे आने वाले दिनों में।
0: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जयपुर में आयोजित विभागीय बैठक में टीबी रोगियों का 100% उपचार शुरू करने, स्क्रीनिंग और जांच बढ़ाने तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कपासन में गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले में संबंधित ANM और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ अनुशासन नात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव के बाद देखभाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।

0: लोकसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 1:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
4: हाँ जी वादा।

0: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवासी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सूची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाज़ें। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन।

0: पॉडकास्ट आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
6: थोड़ा पास में और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए।
7: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
7: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सिडावत से बोल रहा हूँ, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव में एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गाँव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, माव बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती डैम से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती डैम से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप, कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है। तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की सिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सवाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे और अपने अपने काम में व्यस्त है और मस्त भी है सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। मूड तो बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हुए तो डाटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी,
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन है, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है, उसका 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूँ क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल कहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है, ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह, ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
0: जी।
1: हम लोगों के क्षेत्र में धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: इसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना, ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो, या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं, अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कर्ण शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैम।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल, तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है।
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई हुई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्रांग नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुरवे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रहे हैं।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: हाँ मैम, गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जय।

मो पग मगरी सानी सा जनाना जाना मोरी बाजी पंजनिया नी सा ग म पग म पनी सा पनी सा गरी सनी सनी दफ मग मग जनाना जाना मोरी बाजी पंजनिया लट

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूटा।

0: हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए खेती करना जो कहते हैं ना वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना वो हम तक पहुंचता है, जब आप लोग खेती करते हैं ना तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बजार में बेच देते होंगे जाकर के फिर, है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं
1: भारती कार्यक्रम? हेलो फरमाइश सखी सहेली, और वो आते से इतना 4 बजे आता है, त्रिवेणी छिते लोग सभी सुनते हैं, चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है, और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलती है की खाने पीने की सब्जी मल्जी, वो तो जिला है अपना गुना, तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है। तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक आवाज में हमेरा इतिहास की फिल्म।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं?
0: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ, बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
0: जी मैम, हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया, लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
1: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं? तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
0: जी मैम, हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
1: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
0: जी मैम, हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
1: तो बाकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
0: जी उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
1: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
0: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
1: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
0: जी मैम, मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
1: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
0: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
1: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
0: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
1: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
0: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है, कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
1: बड़ा खूबसूरत हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से, और विविध भारती में सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
0: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
1: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
1: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, सुन के रेडियो सारा सुन के।

0: ना पाए।
1: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 022-8670-288। इसका दूसरा नंबर है 4002-4662 यानी 022-400-24662। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: हेलो
3: फरमाइश।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएमएन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए ये जरूरी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी।

0: या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: हेलो,
4: हाँ हाँ,
3: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसार।

0: आईना ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको

0: पाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेते हैं।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: बिना दिल रखे आला दिल बदली दुनिया के आया नया दिल।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: का तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन,
1: दामन दामन
0: तेरा दामन, न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन,
1: चिलमन, चिलमन,
0: मैं हर चिलमन।

0: तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा
1: तुझको इस महफिल

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में एक कवाली अभी आप सुन रहे थे, अमर अकबर एंथनी फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेड इन इंडिया एल्बम का नाम था बिडू का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

यूनिक, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सर उसका चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए।

0: रोज तक पहुँचिए मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में आयोजित की जा रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और बेमिसाल मेहमान नवाजी की मिसाल है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये मेहमान अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। गौरतलब है कि दो दिन की इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में AI के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन और बिना अनुमति राजनीतिक सभा और जुलूस पर रोक लगाई गई है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करने और प्रचार सामग्री तथा सोशल मीडिया के संबंध में निर्वाचन आयोगों के निर्देशों की पालना करने को कहा है। भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में अधिकारियों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने और स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू में स्वीप

कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन कर लोगों को निर्भीक होकर मतदान के लिए जागरूक किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ वेबिनार के माध्यम से संवाद किया। जयपुर में हुई इस वेबिनार में स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया गया। इस वेबिनार का ये वेबिनार पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये वेबिनार हर महीने आयोजित की जाएगी, साथ ही अन्य राज्यों के स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने पर विचार किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा 2026 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में 48 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागों से आपसी तालमेल के साथ परीक्षा की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात सहित सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जल्द ही राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र और शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र के माध्यम से राजस्थानी भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति और शोध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शोधार्थियों को राजस्थानी भाषा के अध्ययन का अवसर मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर में 3 सेंटीमीटर, 12 के शाहबाद और अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 2-2 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। 12 माउंट आबू, अलवर और टोंक सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई। बारिश का दौर कमजोर पड़ने पर राज्य में गर्मी और उमस का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निशब्द ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है, प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है, तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम

रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सब ने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में। वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव हैं वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएं। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं।

बालिका वधू इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधू, अमित कुमार, आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन होगा। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं, अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहाँ बहुत खूबसूरत लगती है वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज सही मात्रा में, सही जगह, सही समय सही लगती है और अगर वो ज्यादा हो जाए, अति हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार, सावन लगातार छाया हुआ है लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत है, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है जहाँ शब्दों की गहराई उभर कर आती है और इसीलिए ये आवाज की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता बल्कि बारिश की चादर में लिपट कर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है, लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है। अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक तो जरूर लिख भेजे, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे। खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है। आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे। दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं। तो कब, किस समय, किसका इंतज़ार है, ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर

सकते हैं, और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल जरूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा। चलिए, हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी, और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पोंछ कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है, यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है। रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज्यादा इंतजार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतजार है, लंबा इंतजार, उन्हें अभी तक याद है, और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपींस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतजार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतजार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस जी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें।

आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूँ कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है, तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से

ये आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतज़ार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाज में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है, वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल हम भी इस चीज से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

0: इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: Over the past decade, BRICS has emerged.
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते

0: हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @IRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
3: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
4: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

0: जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते

0: करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गजरी में ला

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमती फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा एस डी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।
2: आहा!

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म, बज उठी फोन की घंटी। तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया ऐसा?

0: अच्छा क्या बात है, तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई भी
1: रहती है, भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है, पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम, अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी, फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं, चार बहन है सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम हम।
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं, बच्चे है, बहू है, लड़की, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: ये पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लीजिए, इससे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी, तो वैशाली जी बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से, अरे वाह। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना इंदौर?

0: में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं
1: हाँ बहुत बढ़िया है।
0: जी। अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था, फिर कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई ये शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले ना।
0: अच्छा,
1: हाँ इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: मेरा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ दूध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं।
1: हाँ।
0: है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए?
1: पारस मानी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आस्था हो और आने चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं, बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना।
1: हाँ।
0: जी, तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी 3 बेटियां हैं, तो 2 की शादी कर चुकी हूँ मैं और 1 पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों?
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए,

0: कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। अभी हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में, हमने भी देखी।
1: बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में जाके लिए आए।

0: की और अच्छी मिल जाए हमको।
1: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़ मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप
0: खूब अच्छे से कर सकते हैं अपन।
1: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
0: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: अच्छा,
0: बस मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
1: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है?
0: नहीं
1: वो
0: नहीं मैम, जाऊंगी मैं क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में।
1: अरे वाह, तो घर में तो सब
0: इसलिए
1: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
0: जी जी मैम।
1: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
0: जी मैम।
1: तो कहाँ है आपका मायका?
0: मेरा मायका मैम ब्यावरा पचोर,
1: अच्छा,
0: राजगढ़ जिले में है।
1: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
0: बिल्कुल मैम,
1: जी
0: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी मेरा, वो आने वाली है। मैम कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
1: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले लिया है।
0: जी मैम,
1: है ना?
0: वो इंतजार करती है दीदी आ जाएंगे, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहने हैं, 3 बहने हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
1: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती हैं।
0: मेरा इंतजार करती है मैम, मैं एक भी नहीं जाती है
1: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
0: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
1: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और ननद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मजबूर पिक्चर का सुनना है, देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
1: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक है और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी।
0: तो आप खरीद लाई या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी जी दीदी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी जी ऐसे होता ही है, लेकिन क्या है हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी,
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं, और
1: जी,
0: फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी
1: जी,
0: बांधने के लिए।
1: जी,
0: तो बताइए रंजीता जी आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है?
0: कहाँ से बात कर रही हैं इशिका आप?
1: जी, उज्जैन से।
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जी,
0: तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा, मेरे फादर इन लो, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में, मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम,
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैम नमस्ते। पहले तो आपको
0: नमस्ते।
1: हाँ जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से।
0: साबरमती से प्रमिला महेश
1: जी।
0: जी तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए।
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ
1: हाँ
0: हैं।
1: जी,
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी।
0: सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ,
1: जी
0: ये
1: मैम
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से
0: प्रमिला जी
1: जी।
0: तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही ये
1: हाँ जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे तो कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा जी।
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना?
1: शक्ति मिलती है।

0: मैम अभी
1: जी
0: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
1: हाँ
0: एक
1: हम
0: भैया है उनसे भी हम
1: जी
0: अच्छे
1: हम
0: रहते हैं, खुश रहते
1: जी
0: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
1: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
0: जी जी
1: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते
0: मैम,
1: होंगे,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना
0: ध्यान रखते हैं,
1: जी?
0: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
1: ये बात तो
0: का
1: है।
0: और जाना
1: तो
0: भी पड़ता है मैम
1: और
0: फिर।
1: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
0: हाँ
1: बात
0: जी
1: कर सकते हैं, वहां से एक छोटे से ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है
0: जी
1: ना?
0: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
1: सही
0: ऐसा है।
1: बात है जी हाँ,
0: हाँ जी
1: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
0: हाँ
1: हो
0: जी
1: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
1: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात
1: जी
0: है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी,
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है।

0: पीएन मारू हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है।
1: क्या बात है,
0: बेटी है, उसकी बेटी है अनिष्का 8 साल की।
1: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
0: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही है। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था
1: जी।
0: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ

0: शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था
1: जी।
0: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे
1: जी।
0: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
1: क्या बात है, तो आप सारी मिठाइयाँ आप बनाती हैं?
0: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर स्पेशली, मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में।
1: अरे वाह,
0: मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं, करीब 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है
1: जी, वो महसूस कर पा रहे हैं।
0: बहुत याद आती है
1: जी, लेकिन मीना जी यही है जो हमारे प्रिय है, वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका प्यार एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता है।
0: बिल्कुल
1: है ना, तो अच्छी यादों को आप संजो के रखिए, उनके साथ बिताए, जो हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा ही देंगे। है ना जी जी बिल्कुल। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।
2: ये राखी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगाह जान की। जी
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेज ही हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी,
1: खास करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ
0: जी,
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी का टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं
0: जी। कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर
1: हाँ।
0: सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए निगहत जान आप।
1: जी, मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को।
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहल और सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
0: तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल में, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो तो बस
1: साजन का ही इंतजार
0: आ ही रहे हैं सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना? तो अब ये इंतजार का जो वक्त है
1: खत्म हो गया,
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली

0: कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हो, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहाँ से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहाँ गए। वहाँ से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहाँ तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका बस चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था। धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई। जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़ चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे। 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है? ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है

कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूँ, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूँ, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो।

का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाए क्या? बहन ने पूछा। नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान। एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें। थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर चार छह लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है। जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर। अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि वहां खूबसूरत जंगल

परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

0: रघु तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा

कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी? तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ, अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है। आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम? तुम ही कर पाओगी। कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है। उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

FM है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम की 5 बजे है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सीमा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। हमेशा की तरह एक बार फिर उपस्थित है हम आपके समक्ष नई चर्चा, जानकारी और गीत संगीत के साथ। हाथों में दुनिया आ गई एक छोटी सी स्क्रीन के साथ, ज्ञान का दीपक भी इसमें और भ्रम की अंधेरी रात। सोच समझकर कदम बढ़ाना यही समय की है पुकार। सोशल मीडिया सचमुच है एक दोधारी तलवार। जी हाँ सखियों, आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, सोशल मीडिया दोधारी तलवार। सखियों, मानव जीवन में संचार का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पहले संदेश पहुंचाने में दिनों और महीनों का समय लग जाता था, फिर पत्र, टेलीफोन और इंटरनेट का युग आया। आज सोशल मीडिया ने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दुनिया को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया है। एक क्लिक पर जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा और संवाद उपलब्ध है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है सखियों। यही कारण है कि सोशल मीडिया को एक दोधारी तलवार कहा जाता है, क्योंकि इसके लाभ भी अनेक हैं, तो हानियां भी कम नहीं है। सखियों, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये सूचना और ज्ञान का विशाल भंडार है। आज विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षणिक वीडियो और विभिन्न शैक्षिक मंचों के माध्यम से नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। किसान मौसम और कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं और आम नागरिक सरकारी योजनाओं तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत हो रहे हैं। किसी भी आपदा, दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में सोशल मीडिया लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। समाज में जागरूकता फैलाने, सामाजिक अभियानों को गति देने और जनमत तैयार करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त सखियों, सोशल मीडिया ने प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया है। आज अनेक कलाकार, गायक, लेखक, शिक्षक और उद्यमी अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। पहले जहाँ अवसर सीमित थे, वहीं आज एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी कला और विचारों से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। रोजगार के अवसरों की जानकारी, ऑनलाइन व्यापार और डिजिटल मार्केटिंग ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। सखियों, सोशल मीडिया एक उत्कृष्ट सेवक है, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण न रखा जाए तो वो एक खतरनाक स्वामी भी बन सकता है। सोशल मीडिया का दूसरा पक्ष चिंताजनक

है। इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बनता है। कई लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में इसकी लत तेजी से बढ़ रही है। पढ़ाई में ध्यान कम होना, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधियों में कमी, आँखों की समस्या, एकाग्रता में गिरावट, सामाजिक अलगाव और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं इसके दुष्परिणाम हैं। सखियों, सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरें और अफवाहें भी समाज के लिए गंभीर चुनौती हैं। कई बार बिना सत्यता जाने लोग संदेशों को आगे बढ़ा देते हैं, जिससे भ्रम और अशांति का वातावरण बन जाता है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और फर्जी प्रोफाइल, डेटा चोरी जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का उपयोग दूसरों को बदनाम करने, नफरत फैलाने या समाज में विभाजन उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। सखियों, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अनेक लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता और दिखावटी जीवन शैली देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स की संख्या आत्मसम्मान का आधार बनती जा रही है। इससे तनाव, अवसाद और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। विडंबना ये है कि लोगों के ऑनलाइन मित्र बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक रिश्तों में दूरी भी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सखियों, आवश्यकता इस बात की है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग विवेक और संयम के साथ करें। किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें, अपने समय का संतुलित प्रबंधन करें और वास्तविक जीवन के रिश्तों तथा गतिविधियों को भी पर्याप्त महत्व दें। अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि वे बच्चों को सोशल मीडिया के लाभ और हानियों दोनों के बारे में जागरूक करें और डिजिटल अनुशासन का महत्व भी समझाएं। अंततः सखियों, सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक शक्तिशाली साधन है। ये समाज को जोड़ने, शिक्षित करने और जागरूक बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसका दुरुपयोग व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। सही उपयोग में ये वरदान है तो गलत उपयोग में अभिशाप। यही कारण है कि सोशल मीडिया वास्तव में एक दोधारी तलवार है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सूचना का सागर भी है, अफवाहों की धार भी, मित्रता का सेतु भी है, रिश्तों पर प्रहार भी। सदुपयोग से बने उजाला, दुरुपयोग से अंधकार। इसलिए संभल कर चलना सखियों, ये है दोधारी तलवार। इसी के साथ आइए अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सखियों, आतंकवाद इंसान की जान ले सकता है लेकिन इंसानियत की भावना को नहीं मार सकता। आइए पीड़ितों की स्मृति को अपनी शक्ति बनाएं और ऐसी दुनिया के निर्माण का संकल्प लें जहां डर नहीं विश्वास हो, नफरत नहीं प्रेम हो, हिंसा नहीं शांति की जीत हो। सखियों, आज 21 अगस्त है, आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस उन सभी निर्दोष लोगों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने आतंकवादी हिंसा में अपने प्राण गंवाए, घायल हुए या किसी न किसी रूप में आतंकवाद का दंश झेला। साथ ही ये उन पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान, संवेदना और एकरूपता व्यक्त करने का अवसर है। सखियों, आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार पर हमला नहीं करता बल्कि वह समाज की शांति, सुरक्षा, मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी चुनौती देता है। आतंकवादी हिंसा में अक्सर वे लोग प्रभावित होते हैं जिनका किसी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का जीवन साथी, किसी के माता पिता अचानक एक ऐसी हिंसा का शिकार हो जाते हैं जिसका उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा व्यवस्था की लड़ाई नहीं बल्कि मानवता की रक्षा की लड़ाई भी है। आतंकवाद चाहे जितना अंधेरा फैलाए, मानवता का दीप कभी बुझ ना पाए। जो खो गई हिंसा की आंधी में, उनकी स्मृति हमें शांति की राह दिखाए। सखियों, इस दिवस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि पीड़ितों को केवल एक संख्या बनकर नहीं रह जाना चाहिए। प्रत्येक पीड़ित के पीछे एक परिवार, सपने और भावनाएं होती हैं। उनके घाव केवल शारीरिक नहीं होते।

आतंकवाद का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव वर्षों तक परिवारों और समुदायों के जीवन में बना रह सकता है। इसलिए पीड़ितों के सम्मान के साथ साथ उनके पुनर्वास, गरिमा, न्याय और अधिकारों की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। सखियों, श्रद्धांजलि केवल मौन खड़े रहने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाने का संकल्प है जहां किसी निर्दोष की जान नफरत की भेंट न चढ़े। यही इस दिवस की सच्ची भावना है। पीड़ितों को याद करना, उनके परिवारों के साथ खड़ा होना और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर मानवता की रक्षा करना। सखियों, हमें ये भी समझना होगा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए केवल हथियारों से लड़ना पर्याप्त नहीं है। नफरत के स्थान पर संवाद, हिंसा के स्थान पर शांति, कट्टरता के स्थान पर विवेक और विभाजन के स्थान पर मानवता को मजबूत करना होगा। युवाओं को ऐसी विचारधाराओं से बचाना होगा जो उन्हें घृणा और हिंसा की ओर ले जाती है। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समरसता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सखियों, आतंकवाद का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करना भी होता है। जब कहीं विस्फोट होता है, निर्दोष लोगों पर हमला होता है या हिंसा की कोई घटना सामने आती है, तो उसका प्रभाव केवल घटना स्थल तक सीमित नहीं रहता। पीड़ित परिवारों के जीवन में एक ऐसा खालीपन पैदा हो जाता है जिसे वर्षों बाद भी भरना कठिन होता है। सखियों, आतंकवाद किसी एक देश, धर्म, समुदाय या क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चुनौती है। इसलिए इसका मुकाबला भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। सरकारों के साथ साथ समाज, शिक्षण संस्थानों, परिवारों और युवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने बच्चों और युवाओं में सहिष्णुता, संवेदनशीलता, विवेक और संवाद की संस्कृति विकसित करनी होगी। किसी विचार से असहमति होना अलग बात है, लेकिन असहमति का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। हमें ऐसी सोच को बढ़ावा देना होगा जिसमें मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे। सखियों, हमारे देश ने लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का सामना किया है और देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को खोया है। प्रत्येक ऐसी घटना ने हमें ये सिखाया है कि आतंकवाद के सामने डरकर झुकना नहीं, बल्कि एकता, साहस और मानवता के साथ उसका सामना करना जरूरी है। इस दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम केवल आतंकवाद के पीड़ितों को याद ना करें, बल्कि शांति और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाएं। सखियों, नफरत की आंधी चाहे कितनी तेज चले, मानवता का दीप सदा रोशन रहे। जो खो गए आतंक की काली रात में, उनकी यादों के दीप हमारे दिलों में जलें। ना हिंसा हो, ना भय हो, ना कोई लहू बहे, हर इंसान सुरक्षित हो, बस यही संकल्प रहे, बस यही संकल्प रहे। इसी के साथ आइए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। किताबें हो हाथों में तो ज्ञान का संसार मिले, अनुभव हो साथ में तो जीवन का सार मिले, स्कूल हो या घर शिक्षा का उद्देश्य यही हो, हर बच्चे को उसके सपनों की उड़ान मिले। जी हाँ सखियों, विविधा अंतर्गत आज बात करते हैं ऐसे विषय पर जो शिक्षा के बदलते स्वरूप के साथ तेजी से चर्चा में आया है, होम स्कूलिंग अर्थात घर पर शिक्षा। सखियों हम सभी जानते हैं कि विद्यालय केवल किताबों और परीक्षाओं का स्थान नहीं है, विद्यालय बच्चे को ज्ञान देने के साथ साथ अनुशासन, सहयोग, मित्रता, नेतृत्व और सामाजिक व्यवहार भी सिखाता है। लेकिन बदलते समय में शिक्षा का एक ऐसा विकल्प भी सामने आया है जिसमें बच्चा पारंपरिक स्कूल जाने के बजाय घर पर रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, इसे ही हम होम स्कूलिंग या गृह आधारित शिक्षा कहते हैं। होम स्कूलिंग में माता पिता या अभिभावक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं, निजी शिक्षकों, शैक्षणिक ऐप्स, पुस्तकों

प्रोजेक्ट्स और व्यावहारिक गतिविधियों की सहायता भी ली जा सकती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि बच्चे की शिक्षा को उसकी रुचि, क्षमता और सीखने की गति के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। सखियों सोचिए, एक बच्चा विज्ञान में बहुत रुचि रखता है, पारंपरिक व्यवस्था में उसे निर्धारित समय के अनुसार ही विज्ञान पढ़ना होता है, लेकिन होम स्कूलिंग में वो किसी वैज्ञानिक प्रयोग को अधिक समय देकर समझ सकता है। कोई बच्चा चित्रकला, संगीत, खेल या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है तो उसकी पढ़ाई के साथ उस प्रतिभा को भी पर्याप्त समय दिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर बच्चा अनोखा है, हर सीखने की राह निराली, शिक्षा वही जो प्रतिभा को दे उड़ान निराली। सखियों, होम स्कूलिंग का एक बड़ा लाभ है व्यक्तिगत ध्यान। माता पिता बच्चे की कमजोरियों और खूबियों को नज़दीक से समझ सकते हैं। बच्चा किसी विषय को समझने में अधिक समय ले रहा है तो उसे बिना किसी दबाव के दोबारा समझाया जा सकता है। दूसरी ओर यदि बच्चा किसी विषय में तेज है तो उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके साथ सखियों, होम स्कूलिंग में शिक्षा को केवल किताब तक सीमित नहीं रखना पड़ता। खाना बनाते समय गणित और विज्ञान के प्रयोग समझाए जा सकते हैं। बगीचे में पौधों की देखभाल करते हुए पर्यावरण और जीव विज्ञान सीखा जा सकता है। बाजार जाते समय गणना और अर्थशास्त्र समझाया जा सकता है। और किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा इतिहास को जीवंत बना सकती है। लेकिन सखियों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। होम स्कूलिंग के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली, माता पिता का समय और जिम्मेदारी। बच्चे की शिक्षा को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए धैर्य, समय और निरंतरता की आवश्यकता होती है। साथ ही सामाजिक विकास और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। होम स्कूलिंग का अर्थ बच्चे को अकेले घर में बैठाकर पढ़ाना नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बनाना है। चाहे बच्चा स्कूल में पढ़े या घर पर, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उसके भीतर ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, अनुशासन और अच्छे संस्कार विकसित करना होना चाहिए। याद रखिए सखियों, शिक्षा का स्थान बदल सकता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी सखी सीमा को। फिर मिलने के वादे के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।

0: मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कशिश और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवाणी कार्यक्रम। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक लाइन के साथ। सभी तूफान जिंदगी को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ हमारा रास्ता साफ करने भी आते हैं। एक बार सोचिए दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहला रिएक्शन क्या देते हैं? ये मेरे साथ ही क्यों होता है, राइट? मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने गौर किया, हर तूफान हमें तोड़ने नहीं आता। कुछ तूफान आते हैं क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत कुछ अटका हुआ था, सोच, डर, वो लोग जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते थे, वो दोस्त, वो आदतें जो हमें रोक रही थी। और जब तूफान आता है ना, वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है। पहले दर्द होता है, लगता है सब कुछ बिखर गया, लेकिन जब धूल बैठती है, हम देखते हैं कि रास्ता पहले से ज्यादा साफ है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया जो पहले टूटा हुआ लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपको कुछ बेहतर की तरफ ले जा रहा था। हो सकता है परीक्षा में असफल होना, किसी रिश्ते का खत्म होना, नौकरी छूटना, कुछ भी। जरा सोचिए और देखिए कितना कुछ बदल गया है उस तूफान के बाद। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सोचो एक पेड़ है, बहुत पुराना, बहुत घना, उसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं सूख चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। एक दिन जोर का तूफान आता है, वो सूखी शाखाएं टूटकर गिर जाती हैं। देखने में लगता है पेड़ को नुकसान हुआ, लेकिन अगले मौसम में उसी जगह नई हरी ताजा कोपले फूटती हैं, क्योंकि जगह खाली हुई तभी तो नया कुछ उगने की गुंजाइश बनी। यही तो हम सब है ना, कभी कभी जिंदगी के तूफान हमें तोड़ने नहीं, हमें खाली करते हैं ताकि नया कुछ उग सके। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई तूफान आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, यह मुझे तोड़ने आया है या मेरा रास्ता साफ करने? शायद जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन वक्त के साथ जरूर मिलेगा। एक और बात बताती हूँ दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, समंदर में सबसे खूबसूरत मोती तब बनता है जब एक छोटा सा कंकड़ सीप के अंदर घुस जाता है। सीप के लिए वो कंकड़ एक मुसीबत होता है, एक चुबन, एक तूफान जैसा, लेकिन सीप हार नहीं मानती। वो उस कंकड़ के आसपास धीरे धीरे एक चमकती हुई परत बनाती जाती है, और सालों बाद वही चुबन, वही मुसीबत मोती बन जाता है। तो दोस्तों, जो चीज आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, हो सकता है वही आने वाले कल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा खुद पे भरोसा रखिए, और एक चीज याद रखिए, तूफान चाहे कितना भी जोर का हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। आसमान काला होता है, हवा तेज चलती है, लेकिन हर तूफान के बाद आसमान फिर से साफ हो जाता है, धूप फिर से निकलती है। बस हमें तूफान के बीच हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिंदगी में जो भी मुश्किल दौर चल रहा हो, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, करियर की टेंशन या दिल की कोई बात, याद रखिए यह भी गुजर जाएगा, और जब गुजरेगा तब आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गई है। पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, मनोरंजन हो या दोस्तों से बातचीत, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब घर के अंदर और स्क्रीन के सामने बीतता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम अनजाने में एक ऐसी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं जिसमें आउटडोर एक्टिविटी और प्रकृति से हमारा जुड़ाव लगातार कम होता जा रहा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपने दिन का लगभग 93% टाइम इंडोर एनवायरनमेंट में बिताते हैं, यानी दिन के 24 घंटों में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा घर, ऑफिस, स्कूल या दूसरी बंद जगहों में गुजरता है। अब सवाल है कि इसका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक गतिविधि की। जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और वॉकिंग या आउटडोर एक्टिविटी कम कर देते हैं तो हमारा शरीर कम एक्टिव रहता है। लंबे समय तक बैठे रहने की आदत वजन बढ़ने और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि प्राकृतिक रोशनी। सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है। लेकिन अगर हमारी सुबह कमरे की आर्टिफिशियल लाइट और मोबाइल स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी स्क्रीन देखते हुए खत्म होती है तो हमारी नींद का रूटीन प्रभावित हो सकता है। और बात सिर्फ शरीर की नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी हमारी लाइफस्टाइल का असर पड़ता है। प्रकृति के बीच समय बिताना, खुली हवा में चलना और थोड़ी देर आउटडोर रहना हमारी मूड और ओवरऑल वेलबींग के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज खासकर युवाओं के दिनचर्या पर नजर डालें तो पढ़ाई और काम के साथ साथ सोशल मीडिया, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और लगातार स्मार्टफोन यूज ने स्क्रीन टाइम काफी बढ़ा दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी या इंडोर लाइफ गलत है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाती है और कई काम घर से करना संभव हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंडोर लाइफस्टाइल हमारी जरूरत से ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बदल जाती है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। रोज कुछ समय वॉकिंग के लिए निकलना, सुबह या शाम थोड़ी देर बाहर रहना, जहां संभव हो वहां प्राकृतिक रोशनी लेना और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर चलना, ये छोटी आदतें हमारे रूटीन को ज्यादा एक्टिव बना सकती हैं। अगर आप पढ़ाई या ऑफिस

का काम करते हैं, तो हर कुछ समय बाद अपनी सीट से उठिए, फोन पर लगातार बैठे रहने के बजाय दोस्तों से कभी कभी आमने सामने मिलिए, वीकेंड को पूरा समय स्क्रीन पर बिताने के बजाय पार्क, मैदान या किसी खुले स्थान पर कुछ समय बिताए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ अच्छा खाना या एक्सरसाइज नहीं होता। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है काम, आराम, टेक्नोलॉजी, नींद और फिजिकल एक्टिविटी के बीच सही बैलेंस बनाना। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी उस कला की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनती, बल्कि अपने साथ इतिहास, संस्कृति और कई पीढ़ियों की कहानी भी बुनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैंडलूम की। भारत की पहचान सिर्फ उसकी भाषाओं, त्योहारों और लोक कलाओं से नहीं है, बल्कि हमारी पारंपरिक वस्त्र और बुनाई की अलग अलग शैलियाँ भी हमारी सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT शिलोंग में 30 से 31 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम पखवाड़ा 2026 मनाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ हैंडलूम परंपरा को याद करना नहीं, बल्कि युवाओं को इससे जोड़ना और उन्हें इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। इस आयोजन में सबसे खास बात यह थी, यहाँ बुनकरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और कला में रुचि रखने वाले लोगों को एक साथ लाया गया था। कार्यक्रम के दौरान अनुभवी बुनकरों ने विद्यार्थियों के सामने लाइफ वीविंग डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया, यानी छात्राओं को किताबों या तस्वीरों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधा बुनकरों से पारंपरिक बुनाई की तकनीक, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसके सांस्कृतिक महत्व को समझने का अवसर दिया। अब जरा सोचिए, आज जब हमारे पास मशीन से बने हजारों तरह के कपड़े उपलब्ध हैं, तब भी एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा कितना खास हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक डिजाइन नहीं होता, उसके पीछे होता एक हुनर, एक परंपरा और एक कहानी। एक बुनकर जब धागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो वह सिर्फ कपड़ा तैयार नहीं कर रहा होता, वह अपने क्षेत्र की पहचान, वहाँ की परंपरा और वर्षों से चली आ रही कला को आगे बढ़ा रहा होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में बुनाई की अपनी अलग तकनीक, डिजाइन और पहचान है। यही विविधता हमारी हैंडलूम परंपरा को खास बनाती है। इस आयोजन में युवाओं के लिए केवल बुनाई का प्रदर्शन नहीं रखा गया, बल्कि फोटोग्राफी, रील मेकिंग कॉम्पिटिशन, स्टाइलिंग कॉन्टेस्ट, नेचुरल डाई वर्कशॉप्स, पेंटिंग क्विज कॉम्पिटिशन, हेरिटेज वॉक्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशन जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। यानी पारंपरिक कला को आज के युवाओं की भाषा और उनकी रुचियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई युवा किसी पारंपरिक वस्त्र की कहानी को एक अच्छी तस्वीर, वीडियो या रील के जरिए लोगों तक पहुंचा सकता है, तो वह भी इस विरासत को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन सकता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊ जीवन शैली। हैंडलूम और प्राकृतिक रंगों जैसी पारंपरिक तकनीकों को आज सस्टेनेबल फैशन के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इसीलिए हमारी पुरानी कला केवल अतीत की याद नहीं है, उसमें भविष्य के लिए भी कई संभावनाएं छिपी हैं। आज के युवा अगर डिजाइन, फैशन, डिजिटल मीडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को पारंपरिक कला के साथ जोड़ें, तो इससे न सिर्फ हमारी संस्कृति को नए पहचान मिल सकती है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को और बुनकरों को नए अवसर भी मिल सकते हैं। निफ्ट शिलोंग के इस आयोजन का एक संदेश यह भी था कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम अपनी पुरानी कला को सुरक्षित रखते हुए उसमें नए विचार जोड़ सकते हैं। एक पारंपरिक बुनाई को आधुनिक डिजाइन मिल सकता है, एक पुराने शिल्प की कहानी सोशल मीडिया तक पहुंच सकती है और एक स्थानीय कला देश दुनिया के नए बाजार तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज का दिन हमें अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचने का मौका देता है जिनके अनुभव न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखा रहे हैं। आज 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। यह दिन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, अनुभव और समाज में उनकी भूमिका को याद करने का अवसर है। लेकिन आज हम इस दिन को सिर्फ शुभकामनाओं और सम्मान तक सीमित नहीं रखेंगे। आज हम एक सवाल पूछेंगे, क्या आज की युवा पीढ़ी अपने वरिष्ठों से कुछ सीख रही है और क्या वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव आज के युवा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं? दोस्तों, ऐसे समय में हम रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत तेज बना दिया है। हमारे पास किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए इंटरनेट और AI टूल्स है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई टेक्नोलॉजी पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती, वह है जीवन का अनुभव। किसी किताब में हमें लिखा हुआ मिल सकता है कि मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए, लेकिन किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत करके हम समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे किया। टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन रिश्तों को निभाने, परिस्थितियों को समझने और जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरने की समझ अक्सर अनुभव से आती है। आज कई परिवारों में संयुक्त परिवार की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है। पढ़ाई और नौकरी के कारण युवा अपने

घर और परिवार से दूर शहरों में रहने लगे हैं। ऐसे में कई वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में अकेलापन भी चुनौती बन चुका है। इसीलिए कभी कभी उनके साथ बैठकर बातचीत करना, उनकी बातें सुनना या उनके साथ कुछ समय बिताना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। युवाओं की भूमिका यहाँ खास हो सकती है। अगर दादा दादी या नाना नानी को स्मार्टफोन चलाने में परेशानी होती है तो उन्हें वीडियो कॉल करना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना या जरूरी डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करना सिखाया जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिखाने से भी ज्यादा जरूरी है उनके साथ बिताए कुछ समय, क्योंकि डिजिटल कनेक्शन जरूरी है लेकिन ह्यूमन कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती। दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिक भी युवाओं को बहुत कुछ दे सकते हैं। वे हमें अपनी संस्कृति, लोक परंपराओं, परिवार की कहानियों और जीवन के उन अनुभवों से जोड़ सकते हैं जिन्हें शायद किताबों में पढ़ना संभव नहीं। कई बार दादा दादी नाना नानी की सुनाई हुई कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और पिछली पीढ़ियों की यादें भी होती हैं। इसलिए अगर हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव को सुनना, सुरक्षित रखना जरूरी है। स्वस्थ उम्र बढ़ने की बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन सक्रिय रहना, संतुलित आहार लेना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, सामाजिक रूप से जुड़े रहना और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें युवा अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का साथ दे सकते हैं, उनके साथ सुबह की सैर पर जाना, उन्हें स्वास्थ्य जांच या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट याद दिलाना, जरूरी डिजिटल कामों में मदद करना या बस रोज कुछ मिनट उनसे बात करना। ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत मायने रख सकती हैं। आज सीनियर सिटीजन्स डे पर हम शायद कोई बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम कीजिए। अपने घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के पास बैठिए, उनसे पूछिए आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा अनुभव है जो आप चाहते हैं कि मेरी पीढ़ी जरूर जाने। हो सकता है उनका जवाब आपको कोई ऐसी बात सिखा दे जो आपको कोई किताब, कोई लेक्चर या कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकती। इसी विचार के साथ आज के युवाणी में इतना ही। मैं हूँ कशिश। याद रखिए, हमारे बुजुर्ग हमारी पिछली पीढ़ी ही नहीं, हमारी अनुभव की जीवित किताब है। उन्हें पढ़ने के लिए बस थोड़ा वक्त चाहिए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आप सबसे विदा लेने का। आशा करती हूँ आप सब यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: अभी श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आप सुनिए हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्सटरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा की शीर्षक और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों।

श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे वार्ता मेवात के कबीर संत लाल दास। वार्ताकार होंगे श्री जगदीश शर्मा। उसके बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हम जयपुर के दृश्य रिले करेंगे। 7:00 ग्राम भारती कार्यक्रम होगा किसान भाइयों के लिए। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा विधानसभा समीक्षा। 8:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गफरुद्दीन मेवाती और साथियों के गाय लोकगीत। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या। 9:00 अंग्रेजी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:00 हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से। और 11:05 पर समाप्त होंगे हमारे आज के प्रसारण।

कल की हमारी सभा आरंभ होगी हमेशा की तरह सुबह 6 बजे हिंदी में समाचारों के साथ। 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधनवार। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा। 6:35 पर सुनिएगा रामचरितमानस गान संगीत सरिता, इसका समय रहेगा कल सवेरे 6:45। सात बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजलें। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम बातें फिल्मों की, फिल्मी गीतों में रूठने मनाने का अंदाज। स्वर आलेख अर्चना जैन का, प्रस्तुत करता होंगे शिव कुमार शर्मा। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसके अलावा आप दिन में 1 बजे और शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 9:10 से आप सुनेंगे कल सवेरे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से। 12:05 से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 2 बजे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। 2:30 बजे से 2:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। 5 बजे महिला जगत कार्यक्रम होगा। 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे हमारे युवा श्रोता। 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण। 6:10 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा, हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे कल शाम 6:30 और 6:45 पर। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7 बजे। 7:30 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। गीत हमारी आज की सभा के शीर्षक और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। शाम के 6:10 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता मेवात के कबीर संत लालदास, वार्ताकार हैं जगदीश शर्मा।
1: घाटियों में बसा हुआ अलवर जनपद लगता है माने बाहें पसार बुला रहा हो। क्यों ना बुलाए, इस जनपद ने जीवन को बहुत निकट से देखा है। इतिहास को अपने में समेटे यह नगर एक सागर है। इस नगर की थाती सिरिस्का, भानगढ़, बाला किला, संग्रहालय, सीलीसीड लेक, झिलमिल देह, पाराशर, मूसी महारानी की छतरी और तालवृक्ष ही नहीं है, बल्कि यह धरती कितने ही संतों, राजाओं, महाराजाओं, संगीतकारों की कर्मभूमि रही है। पांडु पुत्रों से लेकर भर्तृहरि तक की गाथा इसमें समाहित है। अलीबख्श ख्याल के जनक, अलीबख्श की जन्मभूमि, योग विशारद और योग पर सटीक जानकारी देने वाली पुस्तक के लेखक चरणदास भार्गव की भी इसी भूभाग की देन है। ऐसे ही पावन नगरी में 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित धौलीधूप गांव में परम संत, सांप्रदायिक सद्भाव के महान सेनानायक, मानवता के पुजारी, प्रकृति के अनन्य प्रेमी एवं कर्मयोगी, लाल सागर के रचयिता, मेवात के महान संत लालदास जी ने सम्मत 1597 अर्थात सन 1547 सावन कृष्ण पंचमी को जन्म लिया। गांव धौलीधूप, जो कभी पहाड़ी पर स्थित था, समय के साथ साथ सरकता हुआ अलवर बहरोड मार्ग पर स्थित हो गया है। पर इस सड़क से पहाड़ियों पर स्थित लालदास जी की जन्मस्थली दिखाई दे जाती है। नीचे तलहटी पर लालदास जी के पिता चांदमल और माँ समदा की मजार हैं। मंदिर का निर्माण किया हुआ है जहाँ पुजारी हैं और सैकड़ों के तादाद में लोग प्रतिदिन आते हैं। संत लालदास राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के कुल देवता हैं। उनकी मान्यता वाले परिवारों में आज भी कुछ हद तक उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है और बच्चों के मुंडन इनके लालदास जी के मंदिर में से किसी एक में जाकर करवाते हैं। लालदास जी के शिष्य बनने की विधि भी सबसे आश्चर्यजनक वे अनूठी रही है। लालदास जी शिष्य बनाने से पहले व्यक्ति के सिर का मुंडन करवाकर, मुँह कालाकर, गले में जूते की माला पहनवा कर, गधे पर उल्टा बैठा कर पूरे गांव की परिक्रमा करवाते थे। फिर उसका मुंह धुलवाकर अपने हाथों से शरबत पिलाकर शिष्य बनाते थे। अब बच्चों का मुंडन करवाकर बाल भेंट किए जाते हैं। लालदास जी के पिता चांदमल मेव अपनी ससुराल धौलीधूप अलवर में आकर रहने लग गए थे। बड़ी उम्र तक उनको कोई संतान नहीं हुई, पर एक बार सनकादि साधु उनके गाँव में आए और धौलीधूप में जड़ी बूटियों से इलाज किया, तब लालदास जी का जन्म हुआ। अपने जन्म के कुछ वर्ष बाद ही लालदास जी अचानक बेहोश हो गए और 5 वर्ष तक बेहोश रहे। सनकादि साधु ने इलाज किया, तब उनकी बेहोशी टूटी। 16 वर्ष की आयु में गांव आगोर की भोगरी बाई से उनका निकाह हुआ था। मेव समाज में निकाह की कई रस्में हिंदुओं की तरह होती हैं, जैसे चाक, भात आदि। आगे चलकर भोगरी बाई भी लालदास जी के समान ही समाज सेवा में हाथ बिटाने लगी। लालदास मूलतः लकड़हारा थे, पर उस जमाने भी हरे लकड़ी काटने के पूरी तरह खिलाफ थे। सूखी लकड़ी पहाड़ से लाते थे तथा अलवर के दिल्ली दरवाजे के बाहर बेच देते थे, जहां आज भी उनका मंदिर बना हुआ है। सूखी लकड़ी बेचने से जो भी आमदनी होती थी उसका आधा भाग दान कर देते थे। जाहिर है उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इस बीच उसके सत्ताने हुई, जो कुल 18 लड़के और लड़कियां थीं, जिनमें बेटा पहरा और बेटी स्वरूपा की सामाजिक कार्यों में रुचि होने के कारण क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुए। भोगरी बाई गरीबी से बहुत दुखी थी और लालदास को बार बार उदाहरण देती थी कि अपनी आधी कमाई का दान करना बंद कर दो। कहते हैं भोगरी बाई को लोभ से मुक्ति दिलाने हेतु उन्होंने

पहाड़ी के पत्थरों को हटाकर जेवर जवाहरात निकाले। उन्हें देखकर भोगरी बाई अचंभित रह गई और धन के लोभ से विरक्त हो गई। लालदास जी अपने जीवन काल में कभी भी मंदिर या मस्जिद नहीं गए। लालदास जी का मानना था कि राम अल्लाह एक है और वह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है तथा वही चराचर का स्वामी है। लालदास जी ने अपना ही पंथ चलाया जिसमें डूंगर उनका मुख्य शिष्य था। उनकी सोच और पंथ की बात से तत्कालीन बहादुरपुर का फौजदार बहुत नाराज हुआ। उन्हें दंडित करने के लिए सिपाही भेजे। बंदी बनाकर लाने पर फौजदारी ने जहरीली कुई का पानी पिला दिया ताकि वे मर जाएं। पर किंवदंती है कि वे चमत्कारिक ढंग से बच गए। लालदास जी के बच जाने पर फौजदार बहुत प्रभावित हुआ और वह उनका शिष्य बन गया। वहां से छूटकर लालदास जी अपने गांव पहुंचते उससे पहले ही तिजारा के सूबेदार ने उन्हें कैद कर लिया और उन्हें अपने घर बुलाकर मांस खाने के लिए कहा। सूरदास जी ने बहुत धमकाया, कत्ल करने की धमकी दी, पर लालदास जी ने मांस खाने से मना कर दिया। इस पर सूबेदार ने सम्मान उन्हें रिहा कर दिया। समय के साथ अनेक किंवदंती और चमत्कार उनके नाम से जोड़े गए, पर लालदास जी खुद किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। कबीरदास जी की तरह अनेक दोहे उन्होंने लिखे, पर भाषा का ज्ञान कम होने से, शिल्प की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नहीं होने पर भी भाव की दृष्टि से बेजोड़ हैं। लालदास पंथ का प्रचार करने हेतु धौलीधूप गांव से निकलकर अनेक गांवों में जाकर बसेरा किया, जिनमें शेरपुर, बांदोली आदि हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में शेरपुर गांव में परिवार सहित बस गए, जहां 108 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वहीं उनकी मज़ार है, जो आज भी और उनके परिवारों की भी मज़ार हैं। लालदास जी की समाधि शेरपुर के भूतल में लगभग 10 फुट नीचे बनी हुई है, जहां साल में 3 बार मेला भरता है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों लोग परिवार सहित प्रतिवर्ष आते हैं। लालदास मेव अग्रवाल सोमवंशी समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं। अजमेर के ख्वाजा नजमुद्दीन चिश्ती की तरह ही वे हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत लोकप्रिय हैं और आदर के पात्र हैं। अनेक मंदिर उनके बने हुए हैं, जिनमें सिरसा हरियाणा, दिल्ली दरवाजे बाहर अलवर, धौलीधूप सैमली, शेरपुर, बांदोली, कठोमर के साथ इंदौर आदि स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। लंबे समय तक इन मंदिरों में लोगों का आना जाना बना हुआ है। निसंदेह लालदास पूरे जीवन भर कबीरदास जी की तरह सांप्रदायिक सद्भाव, पर्यावरण की रक्षा, रूढ़िवादिता, भिक्षावृत्ति के खिलाफ संघर्ष करते रहे। अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से लोगों का इलाज भी करते थे। 500 वर्ष पूर्व वे लकड़हारा होते हुए भी वनों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। इंसानियत के इस पुजारी को अनेक कष्ट तत्कालीन सामंतों और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा दिया गया, पर लालदास विचलित नहीं हुए। आज भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के बहुत कई प्रांतों के वो कुल देवता बन गए हैं। मुंडन विवाह आदि शुभ अवसर पर उनकी पूजा की जाती है। उनके मंदिरों में तेल चुग्गा चढ़ाया जाता है तथा सवामणि की जाती है। लालदास जी के जीवन और उनकी कालजयी शिक्षाओं पर आधारित टीवी सीरियल लालदास दूरदर्शन जयपुर से प्रसारित हो चुका है। वर्तमान में टीवी चैनल पर उपलब्ध है। नाटक लालदास पुस्तक भी जयपुर से प्रकाशित है। त्रिपाठी द्वारा उनकी लिखित जीवनी श्री लालदास जी पुस्तक मुकुटलाल अग्रवाल लालदास धर्म प्रचारक संघ द्वारा प्रकाशित है। श्री लालदास जी महाराज की कविताएँ अनिल कौशिक द्वारा प्रकाशित हैं। लालदास जी ने अपने जीवन में अनेक कविताएँ लिखी जिन्हें लाल सागर के नाम से जाना जाता है, किंतु खेद है कि क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होने से संत लालदास जी आज भी उनकी बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रचारित नहीं हैं। संत लालदास जी प्रासंगिक हैं, उनकी शिक्षाएं और कवित्व कालजयी हैं। यही कारण है लाखों परिवारों के वे कुल देवता बने हुए हैं। लाखों लोग उन्हें श्रेष्ठ संत के रूप में हृदय से सम्मान करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है, लालदास की यही कहानी कि वो परिश्रम मीठी बाणी, खुद जलकर औरों को ज्योति, खुद भूखे औरों को रोटी, हर मानव को प्यार करो तुम, धर्मों में इंसाना बांटो, हर पत्ती से प्यार करो तुम, हर दुखिया पर ध्यान धरो तुम। लालदास की यही कहानी कि वो परिश्रम मीठी बाणी।

श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज में अनिरुद्ध फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। और अब आपको सुनवाते हैं अनुपमा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

श्रोताओ, अनुपमा फिल्म का लता मंगेशकर का गाया गीत था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बिल सदन में प्रस्तुत किया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोकने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की, वहीं भाजपा विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सदन में हंगामा किया। इससे कार्यवाही बाधित हुई और 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये समय उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन पर विचार करने का भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास की भी जरूरत है।
1: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बनी। श्री शेखावत ने बताया कि आने वाले समय में इस घोषणा पत्र में साझा किए गए विषयों से पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इससे जयपुर को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक से पहले जयपुर में कल और परसों ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इसमें एआई, कौशल विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा

0: कार्यक्रम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उन युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों की पालना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की घोषणा से पहले तबादले और पोस्टिंग के लिए जारी किए गए आदेशों का क्रियान्वयन हर हाल में 24 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भर्तियों को लेकर कहा है कि यदि चुनाव घोषणा से पहले नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं तो खाली पदों पर पदस्थापन किया जा सकता है। आयोग ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने मतदान कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन किया। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों का रेंडमाइजेशन किया गया। ये प्रक्रिया निर्धारित नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले साल के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए ये फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पीएम श्री विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार 2 की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार आया है और डिजिटल डैशबोर्ड तथा स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से तकनीक का प्रभावी समावेश हुआ है।
1: सारे पीएम श्री स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया है। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियालो राजस्थान में भाग लिया है, विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशंस हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग की राष्ट्रीय सूची में प्रदेश के 11 विद्यालयों ने स्थान हासिल किया है। इनमें 3 पीएम श्री विद्यालय शामिल हैं। राज्य में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों पर सर्वे में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर अनियमित

0: समस्याएं उजागर की है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने कुल 2,03,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि स्वेच्छा से जमा कराई। इन कार्रवाईयों में जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर स्थित प्रतिष्ठान शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरणों में जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल वास्तविक और वैध लेन देन के आधार पर ITC का दावा करें और GST कानून के सभी प्रावधानों का पूरा पालन सुनिश्चित करें। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत झुंझुनू मेडिकल कॉलेज समसपुर परिसर में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में करीब 1,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण में भाग लिया। कोटपुतली बहरोड जिले की श्रीमती पाना देवी मोरिजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में अंगदान के महत्व का संदेश प्रसारित करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, PM श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर परिषद नागौर तथा नगर पालिका बासनी, जायल, कुचेरा और मोडवा में, जबकि दूसरे चरण में मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, डेगाना और रियामबड़ी में चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी और नाम वापसी 3 सितंबर को होगी। चुनाव चिन्ह 4 सितंबर को आवंटित किए जाएंगे। जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारियों को अपने हथियार 21 अगस्त तक संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित श्रेणियों में शामिल बैंक सुरक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड को इससे छूट दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिले के 9 निकायों के 285 वार्डों के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है। कुल 285 वार्डों में 28 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जाति महिला, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 60 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। 126 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों की जिला प्रमुख की सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नागौर खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह गरिमा पूर्वक मनाया गया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यार्थियों ने व्यायाम, योगासन, लेजियम और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 56 प्रतिभाओं और कार्मिकों को प्रशंसा पत्र और पारितोषिक दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली भी निकाली गई। कलेक्ट्रेट से गांधी चौक तक निकाली

0: के रैली में अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा बलों के जवान एनसीसी कैडेट विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बीते महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना के तिलानेश गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से खेती उपज और सिंचाई की जानकारी ली, महिलाओं के साथ खेत में निराई गुड़ाई में भी हाथ आजमाया, बुजुर्गों से उनकी समस्याओं और युवाओं से शिक्षा रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिव सागर तालाब की पाल पर पौधरोपण किया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, सड़क निर्माण और तालाब के सौंदर्यकरण से जुड़े कामों की घोषणाएं भी की। खरीफ फसलों में सूत्रकृमि की समस्या को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है। मूंग, ग्वार, बाजरा और ज्वार की फसलों में पौधों की बढ़वार रुकने, पत्तियां पीली पड़ने और जड़ों में गांठें बनने जैसे लक्षण दिखाई देने पर जांच की सलाह दी गई है। किसानों से बिना विशेषज्ञ की सलाह के कीटनाशक या निमेटिसाइड का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और शिकायत की विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागौर जिले में 290,136 वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है। इसी तरह नागौर जिले में चुनावी तैयारियों के साथ जनकल्याण, कृषि जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, विधानसभा में विपक्ष रा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश, सदन री कार्रवाई अनिश्चितकाल सारू टली। जयपुर में ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग भी। सैर सपाटा रा हलका में भेड़ी रणनीति और मदद बधावण माथे एक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा में सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल की नी। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पीएमसी विद्यालय राज्य में चोखी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा रूप में खास पहचान बनाई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश कीनो। बिल पेश में पाछे कांग्रेस रा विधायक सदन री कार्रवाई में शामिल नहीं भया। इनु पहली सदन री कार्रवाई शुरू हुए ताई विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली कांग्रेस रा विधायक ने विधानसभा रा खास दरूजा माथे रोकण रो मुद्दो उठार ई माथे चर्चा करावण री मांग कीनी। स्पीकर वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल बीचे ओ मुद्दो उठावण री मंजूरी नी दीनी। ई पाछे कांग्रेस रा विधायक वेल माय नारा लगावण सागे हंगामो करण लाग्या। दूजिकानी भाजपा रा विधायक कांग्रेस रे खिलाफ नारा लगाया। इनु कामकाज माय अड़चन आई और सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। कार्रवाई ओजू स्वरूप है वनपनाई कांग्रेस रा विधायक रो हंगामो चालतो रियो, जिन्ने देखता था का स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन रा 6ठा सत्र री कार्रवाई बेमियादी भगत सारू टाल दीनी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा बढ़ता उपयोग ने ध्यान रखता थका सैर सपाटा रा हलका में आई इनने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत है। वह जयपुर में ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग पूरी हुआ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। शेखावत कहो कि मौजूदा दौर जिम्मेदारियों भरिया सैर सपाटा माथे विचार करण रो है। वह कहो कि लाडला 10 साल में भारत में सैलानिया री तादाद 3 गुना बथी है। पर्यटन मंत्री कहो कि सैर सपाटा न ध्यान रखता थका ई हलका माई कौशल विकास री जरूरत है।
2: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल

0: टूरिज्म, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा तट टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन, ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
1: केंद्रीय मंत्री बतायो कि ब्रिक्स देशाना पर्यटन मंत्रियां ने मीटिंग माए जयपुर घोषणा पत्र तैयार करी चियो। मीटिंग माए ब्रिक्स देशां बीचे सैर सपाटा रा हलका माए भेड़ी रणनीति और एक दूजारी मदद बधावन रे बारा माए एक राय बनी। श्री शेखावत बतायो कि आवता भगत माए घोषणा पत्र माए साझा करी चिया मुद्दाओं सैर सपाटा रा हलका माए नुआ आयाम बनेला जाऊ जयपुर ने बत्तो फायदो मिलेला। ध्यानयोग है कि ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग पहली काल हर 19 अगस्त ने जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की मीटिंग रखी जी ही, जिनमें ए

0: एक राय बनी। श्री शेखावत बतायो कि आवता भगत में एक घोषणा पत्र में साझा करी जिया मुद्दाओं शहर सपाटा रा हल्का में नुआ आयाम बनेला जाऊं जयपुर ने बत्तो फायदो मिलेला। ध्यान जोग है कि ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग पहली काल हर 19 अगस्त ने जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह री मीटिंग रखी जी ही जिनमें एआई कौशल विकास हर सैलानिया सारू सुबिता माए बढ़ोतरी समेत कई खास मुद्दा माथे चर्चा करी जी। दूजी कानी पुणे माए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया री सदारत माए ब्रिक्स देशों रा संचार मंत्रियों री मीटिंग रखी जी। इनमाए ब्रिक्स रा सदस्य देशों रा संचार मंत्री सूचना और संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल बदलाव और नुआ कामा रा बारा माए सहयोग मजबूत करन माथे विचार कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष हलकाओं जुड़िया 20 स्टार्टअप रा मुख्य कार्यकारी अधिकारियां और स्टार्टअप शुरू करने वाला सागे बातचीत कीनी। इस मौके वे कहो कि देश रो अंतरिक्ष हलको वैश्विक प्रतिभा कंपनियां और निवेश खींचण रो केंद्र बन सके है। ये पाछे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि वाने नौजवान कारोबारियां और नुआ काम करने वालों मिलर खुशी भी जो एक नुआ और चुनौती वाला हलका माए ध्यान जोग हिम्मत रो दर्शाव की नो। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव रा ऐलान पहले करी जिया तबादला और पोस्टिंग सारू जारी हुकम री पालना 24 अगस्त ताई तय करावण सारू कहो है। राज्य निर्वाचन आयोग कहो कि चुनाव रा ऐलान पहली नियुक्ति रा हुकम जारी भेवण री सूरत माए रीता ओहदा माथे पदस्थापन करियो जा सके है। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव 2026 री तैयारियां चल रही है। आज चित्तौड़गढ़ माए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू चुनाव ड्यूटी वाला कर्मचारियां रो पहलो रेंडमाइजेशन कीनो। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव सारू बनाई जी पोलिंग पार्टियां रा पीठासीन अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियां रो रेंडमाइजेशन करी जियो। जालौर माई मास्टर ट्रेनरां री सिखावण रो कार्यक्रम राखी जियो। पाली माई वोटर लिस्टां माए नाम मंडावण समेत न्यारा न्यारा जरूरी बदलाव करण सारू मतदान केंद्रा माथे खास शिविर लगाया जा रहा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा देवन सारू LLB डिग्री हासिल करन वाला बाबत जरूरी 3 साल री वकालत रा अनुभव री जरूरत न घटार 1 साल कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति AG मसीह और के विनोद चंद्रन रिपीट ओ फैसलो दिनो। पीठ कहो कि 25 मई 2025 31 मार्च 2027 पीछे भर्तियां सारू निकाली जी न्यायिक सेवा परीक्षावां देवन सारू उम्मीदवार पहली रा अनुभव वगैरह ही पात्र वेला। हालांकि आ परीक्षावां माए चुनी चिया उम्मीदवारां नी नियुक्ति सरू माए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियां रा तौरू फैला। वान न्यायिक अकादमी माए 1 साल री सिखावण लिया पाछे 1 साल रो व्यवहारिक प्रशिक्षण लेवणो वेला। ध्यान जोग है कि सुप्रीम कोर्ट लाडला साल 20 मई ने LLB करोड़ा नुआ लोगों ने प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा देवण रोक दीना हा और ई सारू कम 3 साल री वकालत रा जरूरी अनुभव री व्यवस्था दीनी ही। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि PMC स्कूल राज्य में बेहतर क्वालिटी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा तौर पहचान बना रहा है। वे आज जयपुर PMC स्कूलों रा संस्था प्रधाना सागे राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि आ स्कूलों माए नाम मंडावन वाला विद्यार्थियों री तादाद बधी है। इम्तिहान रा नतीजा माए गुणात्मक सुधार आयो है। वे हर महीना 10 संस्था प्रधाना सागे बातचीत करण और सबो चोखा अभ्यासा ने पूरा प्रदेश माए लागू करण रा हुकम ही दीना।
1: सारे PMC स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियालो राजस्थान में भाग लिया है। विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन हैं इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर चुनी जी PMC स्कूलों रा

0: संस्था प्रधान और जिला और ब्लॉक स्तर रा शिक्षा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीका शामिल थिया। ध्यान जोग है कि शिक्षा मंत्रालय कानून जारी करी जी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग री राष्ट्रीय सूची माए प्रदेश 11 स्कूल शामिल है, चा माए 3 पीएम श्री स्कूल ही भेड़ा है। जयपुर भिवाड़ी संगरिया और श्री गंगानगर माए कारोबारी प्रतिष्ठान माथे करी जी जीएसटी सर्वेरी कार्रवाई माए 5 करोड़ रुपये 32 टैक्स गड़बड़ियां उजागर हुई है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाता 2,03,00,000 रुपये 32 रकम जमा कराई। जीएसटी विभाग टैक्स देवन वालों केवल असल और कानूनी लेन देन रा आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रो दावो करण और जीएसटी कानून री पालना तय करण री अरज कीनी है। हरियाणा राजस्थान अभियान रा तहत झुंझुनूरा मेडिकल कॉलेज परिसर माए वन महोत्सव कार्यक्रम राखी चियो। मेडिकल कॉलेज वन विभाग न्यारी न्यारी स्कूलना और सामाजिक संस्थावां री ओर उमिलर राखी जाई कार्यक्रम रे दौरान कॉलेज परिसर माए करीब 1,000 पौधा रोपी चिया। कोटपुतली बहरोडरा पाना देवी मुरीजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय माए आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रा तहत पोस्टर निबंध और नारा लिखन री होड़ा राखी ची। आरो मकसद टाबरिया माए अंगदान रा प्रति जाग जगावण और समाज माए अंगदान रा महत्व रो संदेश न बतावणो हो। सवाई माधोपुर जिला माए रणथंभौर बाघ परियोजना रा दूमोदा गांव माए तेंदुआ रा हमला रे कारण एक टाबर री मौत पाछे उपजो तनाव गांव वाला और वन प्रशासन बीच सहमति पाछे खत्म फेंक्यो है। ई पाछे लाश रो पोस्टमार्टम कर रवाना परिवार वाला ने सौंपती री ची। उप वन संरक्षक प्रथम मानस सिंह बतायो कि मरण वाला रा परिवार वाला ने संविदा रा आधार नौकरी देवन और नियम रे मुजब उचित मुआवजो देवन रे बारा माए सहमति बनी है। तेंदुआ ने पकड़वा सारू वन विभाग की टीमा खास ऑपरेशन चला रही है। नई दिल्ली माए चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप माए भारत री त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद री जोड़ी महिला डबल्स होड़ रा सेमीफाइनल माए पूग की है। भारत री जोड़ी पहला सेट माए पिछड़िया पाछे चौथी वरीयता वाली चीन री जिया यी फैन और जांग शू श्यान री जोड़ी ने 16-21, 21-15, 21-13 शिकस्त दीनी। ई जीत सा गई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप माए भारत रो एक तमगो पक्को फेंक्यो है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप माए लाला 15 साल माए महिला डबल्स रो ओ भारत रो पहलो तमगो फैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला इन कार्यक्रम री 137वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। विधानसभा माए विपखरा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश, सदन री कार्रवाई अनिश्चित काल सारू टली। जयपुर माए ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग भी। सैर सपाटा रा हलका माए भिड़ी रणनीति और मदद बधावण माथे एक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा मा सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल कीनी। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो PMC विद्यालय राज्य माए चौकी और नुआ जमाना री भनाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा रूप माए खास पहचान बनाई। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 7 बजे है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम की चौपाल में बैठा सभी किसान भाई और बहनों को महेश भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज के अपनी चौपाल में अपन चर्चा करेंगे फलदार पौधों में करे संगाई और कटाई छटाई। जानकारी की बातों का विषय रहेगा ड्रिप सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और दूसरी है ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन। साथ ही सुनेंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय है मशरूम उत्पादन से अधिक लाभ कमाए, और किसान भाइयों जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव, और सुनेंगे एक चौका सा लोकगीत। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की चर्चा जिसका विषय है फलदार पौधों में करें संगाई और कटाई छटाई। फलदार पौधों में जिस प्रकार पोषक तत्व, जैसे हम खाद वगैरह देते हैं, सिंचाई करते हैं, कीटनाशक बीमारियों के रोकथाम के लिए दवाइयां देते हैं, उसी प्रकार कटाई और छटाई करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर समय पे हम कटाई छटाई नहीं करते हैं तो फसलों के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। संगाई व कटाई छटाई का उद्देश्य क्या होता है ये भी हमें जानना चाहिए। सबसे पहले संगाई की बात करें, इसका उद्देश्य होता है पौधे को विशेष आकार या ढांचा प्रदान करना, जिधर आवश्यकता न हो उधर उसकी डालियाँ नहीं हो, चारों तरफ वेट बराबर हो, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ताकि पेड़ को एक मजबूत ढांचा मिले, शाखाएं हमेशा सही स्थान से निकलें और कृषि कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हो और नई फल तोड़ने में समस्या उत्पन्न हो। कटाई और छटाई की बात करें तो इसका उद्देश्य फल देने वाली नई डालियों के निर्माण से है कटाई करना, क्योंकि प्रूनिंग के बाद नई शाखाएं निकल के आती है और अगले वर्ष फलों का उत्पादन देती है। इसके अलावा जो सूखी जड़ें होती है, सूखे जो डालियाँ होती हैं, उन्हें भी खोदकर या काट के निकाल दिया जाता है, और कटाई छटाई के बाद गोबर की सड़ी हुई खाद उनमें अवश्य डालें जिससे ये सही रहता है। अगर हम बेर की बात करें तो बेर के जो वृक्ष होते हैं उनकी कटाई छटाई अगर नहीं करेंगे तो उत्पादन में खूब गिरावट आ जाएगी, इसलिए अप्रैल और मई जो इनकी सुषुप्त अवस्था रहती है उसमें कटाई छटाई कर देनी चाहिए, इससे उत्पादन में काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। नींबू प्रजातीय फल, ये नींबू वर्गीय जो फलदार पौधे हैं इसमें नींबू, नारंगी, माल्टा मौसमी आते हैं, सदाबहार होने के कारण इसमें कटाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें संगाई करना चाहिए कि जैसे चारों तरफ से एक मजबूत पौधा बने, और साथ में इसमें जो प्रोनिंग होती है यानी इसका जो जाला निकालते हैं वो हमें निकालना चाहिए, उसके बाद खाद देना चाहिए। छटाई के लिए दिसंबर माह से अधिक अनुकूल, विशेषकर नींबू वाटर शूट्स जल प्रवाह के लिए उत्पादन टहनियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये टहनियाँ 90 डिग्री के कोण में होती हैं और कांटे सीधे होते हैं, इनमें क्या है फल नहीं आते, तो उनको भी हम कटाई छटाई से अलग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रहा फलदार पौधों में ऐसे करें अपन संगाई और कटाई छटाई। इसके बाद अपन सुनते हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का जो विषय है मशरूम उत्पादन से अधिक लाभ कमाएं, नांगल हीरा गांव के प्रगतिशील किसान श्री अखिलेश यादव से भेंटवार्ता। इससे पहले अपन सुन लेते हैं।

0: जल हौज अपनाएं और अनुदान का लाभ भी उठाएं।
1: सिंचाई पाइपलाइन के लिए लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 7% तथा अधिकतम 18,000 जो भी कम हो और अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 50% या अधिकतम 15,000 जो भी कम हो अनुदान दे है। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समा

0: आवाज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: राजेश,
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: फसल भाई और राम राम, आज हम बात कर रहे हैं नांगल हीरा गांव से, जहाँ के प्रगतिशील किसान हैं अखिल यादव जी। एक किसान का बेटा किस तरीके से परंपरागत खेती से हटकर के नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और उन्होंने मशरूम के क्षेत्र में नवाचार किया और आज अलवर जिले में मशरूम उत्पादक किसान के रूप में जिनकी पहचान है, आइएगा उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। अखिल यादव जी, राम राम साहब।
5: नमस्कार सर। नमस्कार सबको, राम राम मेरी तरफ से।
4: अखिल जी, थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से परंपरागत खेती को छोड़ करके आपने मशरूम उत्पादन में कदम बढ़ाया।
5: तो शुरुआत में जमीन हमारे पास कई सालों से थी और पुराने तरीके की खेती करते थे, जिसको कि खेतों में भी हमने कन्वर्जन किया है, जहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके पॉन्ड हमने बनाए, पानी की समस्याओं को सुलझाया, बिजली की समस्याएं सुलझाई। मशरूम में इसलिए आए क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है। उत्पादन हम कर रहे हैं लगभग 800 से 900 किलो पर डे बटन मशरूम का। पूरा एयर कंडीशन प्लांट होता है, ये खेतों में नहीं उग सकती है, जो कि 90% आदमी सोचते हैं मशरूम खेतों में उगती है।
4: बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप बटन मशरूम कर रहे हैं, तो बटन मशरूम करने के लिए आपने किस तरीके से सेटअप स्थापित किया, कौन कौन सी मशीनें आपके पास हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
5: बेसिकली बटन मशरूम को प्रोडक्शन में या पैदा करने के लिए, जिसको हम मशरूम कल्टीवेशन कहते हैं, इसके लिए 5-7 चीज़ों की बहुत अहम ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये नॉर्मल खेतों में नहीं हो सकती, ये बेसिकली ठंडे, जिसमें कि हम लोगों को टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी 85% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, CO2 भी मेंटेन करना पड़ता है, और इसका जनरली ग्रोइंग रूम में साइकिल 50 दिन का होता है। हम शॉर्ट मेथड से खाद भी खुद की ऑर्गेनिक खाद खुद ही बनाते हैं, जिसके लिए बेसिकली 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। तूड़ा या तूड़ी को भिगोना, उसमें मिक्सिंग करना, उसको 70 से 80 डिग्री पे गर्म करना, जो कि हवा से किया जाता है, जला के नहीं, जिनको हम कहते हैं टनल और बंकर, वहाँ पे हम इनमें बैक्टीरिया वायरस फ्री कर देते हैं। 0 बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनमें कंपोज में, जो कि बेसिकली 25-1 दिन का टाइम मोटा मोटा ले लेता है कंपोज बनाने में। उसके बाद हम इसमें बीज डालते हैं मशरूम का। तो आज एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मशरूम का बीज जनरली गेहूँ के दाने से या बाजरे से बनता है, ये नॉन वेज और उस कैटेगरी में नहीं आता। यदि गेहूं का दाना ही मेरा बीज है तो नॉन वेज या जो अपनी गलत फहमियां हैं उनको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा।
4: सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तूड़ा है जिसके ऊपर आप मशरूम का प्रोडक्शन लेते हैं बटन मशरूम का, तो ये तूड़ा की व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं?
5: इस तूड़े की व्यवस्था अभी तो हम लोग, हो सकता है आप में से कुछ बंदे सुन भी रहे हो जिनका हमने तूड़ा या तूड़ी खरीदी भी हो। तूड़ा और तूड़ी जनरली अभी तो हम गांव से ही ले रहे हैं,
4: आसपास के गांवों के जो किसान हैं उनसे ही आप तूड़ा लेते हैं।
5: बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि जनरली कि इसमें हम मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम लोग जैसे जो भी हार्वेस्टर या हार्वेस्टिंग जहाँ हो रही होती है, वहाँ पे सीधा बंद ट्रॉलियों में ही भरवा के मंगाते हैं, बिल्कुल साफ, क्योंकि मिट्टी हमारे यहाँ नहीं चल सकती कंपोज में।
4: बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये जो बटन मशरूम का ये आपने काम यहाँ पे चालू किया है, तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष आपको बटन मशरूम का उत्पादन लेना पड़ता है। उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना है, आर्द्रता भी मेंटेन करनी है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। उसके लिए किस तरह के आपने रूम चैम्बर बनाए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आपने इस मशरूम कल्टीवेशन में आपने ध्यान रखा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है?
5: मेरे पास अभी लगभग 10 रूम हैं, जिनमें एक बार में 10 किलो के 2500 से 2800 बैग लोड होते हैं। मतलब लगभग हम लोग 25 से 28 टन कंपोज एक रूम में लोड करते हैं, भरते हैं जहाँ पे मशरूम। फिर हम उसको उन बैग्स का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, CO2 बढ़ जाती है तो उसको भी निकालने का प्रबंधन होता है। ये ऑटोमेटिक पैनल से एयर कंडीशन प्लांट है पूरा का पूरा, जो ये खुद मेंटेन करता है।

0: तो आपने बताया कि ऑटोमेटिक पैनल आपने लगा रखे हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं,
1: ह्यूमिडिटी,
0: जो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं, जो CO2
1: CO2
0: को भी
1: भी।
0: बाहर निकालते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक तरीके से आप इस समय अलवर जिले के इस नांगल हीरा गांव में मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि पैकिंग करके मार्केटिंग करना भी मशरूम में एक बहुत ही मेहनत का काम है, तो इसके लिए आपने किस तरीके से पैकिंग करते हैं और कहाँ पे इसका मार्केटिंग करते हैं?
1: सर, अभी करने को तो पैकिंग तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक मशीन्स मंगा रखी हैं बाहर से, यहाँ इंडिया में तो बनती भी नहीं है
0: आपने
1: बाहर
0: कहाँ से
1: से।
0: मशीन मंगाई, पैकिंग मशीन कहाँ से आई?
1: ये पैकिंग मशीन जो मेरे पास है ये लगभग 700 से 750, 200 ग्राम के बैनेट 1 घंटे में पैक कर देती है। और जो
0: यानी कि जो
1: मशीन,
0: पैकेट जिन्हें बोलते हैं।
1: हाँ मशरूम
0: अच्छा
1: पैनेट, पैनेट
0: जी
1: पैकेट दो
0: जी
1: सौ ग्राम के होते हैं वो, जो कि हम बेसिकली उस मशीन से लगभग 160 से 170 किलो मशरूम 1 घंटे में पैक कर पाते हैं। उससे पहले थोड़ा लेबर का काम भी रहता है, जिसमें कि मशरूम को साफ करना, पैक करना, वजन करना, मशीन तो पैक कर देती है, इसके ऊपर फूड ग्रेड फिल्म चढ़ाई जाती है
0: जी
1: जिससे हम इसके पैकिंग करते हैं, क्योंकि इसको एयर टाइट पैकिंग चाहिए। और मशरूम बड़े टेम्परेचर में ही मेंटेन हो सकती है, अपन सोचें कि बाहर 25 डिग्री या 28 डिग्री पे ये रुक जाएगी तो ये काली पड़ जाती है। इसलिए आगे बाजार से भी खरीदें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मशरूम यदि थोड़ी बहुत दागी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर काली है तो वो खराब हो चुकी होती है। आप मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हैं और?
1: अभी लोकल में तो हम लोग खैरतल भी जाता है 10-20 किलो, अलवर भी जाता है 50-60 किलो, किशनगढ़ भी 10-20 किलो जाता है, पर ज़्यादातर माल गुड़गांव और दिल्ली दे रहे हैं।
0: अमूमन क्या भाव आपको वहाँ पे इस समय मिल रहा है बटन मशरूम का?
1: सर कल का रेट बताऊं तो लगभग 180-190 चल रहा था
0: जी
1: कल का रेट, लेकिन इसमें रेट वेरिएशन बहुत होता है
0: जी
1: क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, बहुत
0: बिल्कुल
1: जल्दी ख़राब होता है, इस वजह से रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, तो वहाँ पे आढ़तिया उस हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जो कि 60 रुपये से इवन 300-350 रुपये किलो भी हो जाता है।
0: ये तो बहुत बड़ा एक वेरिएशन इसमें रखते हैं रेट का। निश्चित रूप से आप एक जागरूक किसान हैं और एजुकेटेड फार्मर आप हमारे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक दिन में आपके यहाँ पे जो प्लांट है उससे कितना मशरूम पैदावार आप ले रहे हैं पर डे की अगर बात करें अमूमन?
1: अमूमन यदि एवरेज भी मानूँ तो अभी हम लोग लगभग महीने में माने तो अभी 15 टन के इर्द गिर्द ले लेते हैं, मतलब 500 से 700 किलो पर डे, जो कि अभी फुल कैपेसिटी पे जाने पे हम लोग 1 टन के आसपास पहुंच जाएंगे।
0: यानी कि इस समय आप 500 से 700 किलो
1: किलो
0: एक दिन में मशरूम,
1: जो
0: बटन
1: कि
0: मशरूम आपका उत्पादन हो रहा है, जिसको आप अलवर में, खैरतल में, अलवर इसके अलावा दिल्ली और गुड़गांव में भी मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जो किसान साथी हमारा रेडियो सुन रहे हैं, अगर वो इस मशरूम कल्टीवेशन पे आए तो किस तरीके से उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
1: सर ध्यान से ज़्यादा तो ये काम एक्चुअली में थोड़ा बहुत इसके पीछे की सारी थ्योरी पता होनी चाहिए।
0: जी
1: एक इसके लिए प्लांट नहीं चाहिए, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए।
0: जी जी
1: इकोसिस्टम में हर चीज़ आ जाती है, जिसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
0: बिल्कुल
1: सिर्फ 4 रूम लगाने से मशरूम पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए कंपोज बनाना है, उसके लिए लेबर को कैसे कम करना है, कितनी कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन ला सकते हैं, सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो हर चीज़ को वो, मेरा कहने का मतलब है जनरली मेरे पास भी बहुत सारे भाई बहन आते हैं जो कि कहते हैं हम मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो शुरू में हम 2 रूम से चालू कर लेते हैं, लेकिन 2 रूम से आप कभी जीत नहीं सकते। उसका कारण बताता हूँ, सपोज करो 2 रूम आपने लगा भी लिए और आपने 100 किलो मशरूम रोज की उगाने भी लग गए, तो उसको बेचने का खर्चा, उसको ले जाने का खर्चा, उसको तोड़ने का खर्चा,
0: बिल्कुल
1: वो खर्चे इतने हो जाएंगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अदर एक्सपेंसेज इतने ज्यादा हो जाएंगे अगर आप छोटे लेवल पे काम करेंगे।
1: हाँ, ये लेबर इंटेंसिव काम है, लेबर की भी जरूरत पड़ती है, ये नहीं है कि आप 100% ऑटोमेट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो ये मशरूम का कल्टीवेशन आपने कब, किस सन से आपने चालू किया, कितना समय आपको इस समय हो गया है?
1: मैंने सर ये 2000 प्रोडक्शन में आया था जुलाई 2024 में
0: जी,
1: तो लगभग भी 2 साल होने वाले हैं, 2 से 2.25 साल हो गए हैं।
0: आपने
1: और
0: जो मशरूम कल्टीवेशन का जो ये सेटअप किया है, इससे क्या भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से भी आपको कुछ सहायता मिली है?
1: मैंने ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू अप्लाई करके रखा हुआ है, अभी तक सहायता तो नहीं आई है, बाकी ये है कि उनके उनसे अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट,
0: उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। तो अंत में हम पूरे अलवर जिले के सभी आकाशवाणी जो किसान साथी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो बस एक ही संदेश देना चाहूँगा, काम बहुत बढ़िया है, शिद्दत से करेंगे तो पैसा भी लगेगा।

0: और मोटा लगेगा, क्योंकि इकोसिस्टम अधूरी चीज, तीन टायर की गाड़ी चलाएंगे तो नहीं चलेगी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल यादव जी, नांगल हीरा गांव से आप हमसे बात कर रहे हैं। आप अलवर जिले के सर्वश्रेष्ठ मशरूम उत्पादक किसान हैं। आकाशवाणी से बात करने के लिए पुनः आपका आभार, धन्यवाद सर, राम राम साहब।
0: नमस्कार जी, सब भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।
1: सर भाई राम राम, आज हम बात
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी मशरूम उत्पादन के बारे में भाई अखिल यादव से। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उन्होंने दी और एक अच्छा लाभ हम इसमें कमा सकते हैं, तो ये जानकारी आपको निश्चित रूप से काम आएगी। किसान भाइयों, अब समय है मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक चौका सा लोकगीत।

0: सिंचाई अपनाएं, पानी की हर बूंद से अधिक उत्पादन पाएं। बूंद बूंद सिंचाई अपनाने से पानी की 60% तक बचत होती है, फार्म की मजदूरी भी बचती है और फसल का उत्पादन भी 150% अधिक होता है। बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए 75% और सामान्य किसानों के लिए 70% तक अनुदान दे है। और हाँ, किसान अनुदान के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केंद्र से संपर्क करें। आत्मा योजना अलवर द्वारा किसान हित में जारी।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: किसान भाइयों, अभी आपने सुना सीमा मिश्रा और उनके साथियों को गाया हुआ गीत, निश्चित रूप से पसंद आया होगा। जानकारी की बातों का विषय लेते हैं, ड्रिप सिंचाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आज के समय वर्षा और स्वच्छ जल स्रोत की उपलब्धता दिन पर दिन घटती जा रही है। अपन ये बात माने कि सिंचाई के लिए जो पानी की मात्रा है वो लगातार कम होती जा रही है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी पद्धतियाँ चाहिए जिनमें पानी की उपयोग कम हो सके। ये ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप सिंचाई क्या है? मृदा, मौसम और फसल का अध्ययन करने के बाद नियंत्रण के साथ फसलों की जड़ में बूंद बूंद पानी डालना, ये ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का उद्देश्य है कि सिंचाई के लिए उपयोग हो रहे भूमिगत जल की बचत करना, और इसका उद्देश्य इसके साथ साथ इस जल की उपयोग क्षमता बढ़ाना, उपज प्रति इकाई जल की खपत भी बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करने के लिए एक सिंपल है कि हम पाइपों का प्रयोग करें और निश्चित दबाव जल वितरण प्रणाली प्रवाहित करने के लिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में ठोस पदार्थ जल वितरण प्रणाली को जाने

0: से रोकें और विभिन्न प्रकार के फिल्टरों का प्रयोग करते हुए वांछित मात्रा में जल आपूर्ति का उचित लंबाई और व्यास प्लास्टिक के पाइपों का प्रयोग करते हुए हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। पौधों में समुचित मात्रा में पानी देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्सर्जकों का प्रयोग करते हैं जो लेटरल लाइन का ऊपर वांछित दूरी पर लगा दिए जाते हैं। इससे फायदे बहुत होते हैं। अपने पहला तो ये कह सकते हैं, ज़्यादा पानी का जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी की खपत होती है। दूसरा ये कि पानी अगर सभी जगह नहीं लगेगा तो खरपतवार ज़्यादा नहीं उगेगी, और ज़्यादा पानी नहीं लगने से मिट्टी में जो साल्टेशन होता है यानी नमक जो ऊपर आता है वो भी नहीं आएगा, इससे हमारी भूमि भी उपजाऊ रहेगी। किसान भाइयों, ये रही ड्रिप सिंचाई की बात, आप सुनते हैं एक संदेश और।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: किसान भाइयों, जानकारी की बातों का विषय एक और अपने पास, ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण भूमि लगातार कम होती जा रही है, भूमि बिकती जा रही है, उन पर बस्तियां बनती जा रही है। इसके लिए यह है कि नियंत्रण वातावरण, प्लास्टिक से ढके हुए घर जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं, उसमें हम खेती कार्य करें। इसमें निराई गुड़ाई सिंचाई इत्यादि आसानी से हम कर सकते हैं। नियंत्रण वातावरण से क्या अभिप्राय है, हम इसको चार भागों में बांट के देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, आर्द्रता और प्रकाश, ये चार चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनका भोजन होती है। पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर ही रह जाती है। जब सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं तो जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों को मिल जाती है। आर्द्रता की अगर बात करें तो इसमें जो भी पानी हम देते हैं वो वाष्पित होकर उसी में बना रहता है, जिसे ग्रीन हाउस में ऊष्मा कर वाष्पित हो जाती है और ग्रीन हाउस के अंदर नमी बढ़ जाती है जो हमारे पौधों में नमी की मात्रा को बढ़ाए रखती है, जिसे मिस्टिंग यूनिट लगाकर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बात, बहुत जो भी फसलें होती हैं उनके लिए निश्चित तापमान होता है और उस तापमान का नियंत्रण हम इस ग्रीन हाउस से कर सकते हैं। प्रकाश, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में चाहिए। साफ वातावरण की यह क्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए बादलों की स्थिति यह क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। ग्रीन हाउस में कृत्रिम प्रकाश की सहायता से इसे संपन्न कराया जा सकता है। ग्रीन हाउस में वातावरण नियंत्रित रहता है, इसलिए खुले खेतों की तुलना में कम मात्रा में अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही आज की जानकारी की बात। अब बात करते हैं आज के बाजार भाव की। आज अलवर की मंडी में जो बाजार भाव रहा गेहूं का, 2550 रुपए से लेके 2675 रुपए प्रति क्विंटल, जो 2150 से और 2450 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5600 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 7400 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1950 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार 4500 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल। यदि आज हम अपने मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में आर्द्रता बढ़ सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग द्वारा जाहिर की गई है और उससे वर्षा भी हो सकती है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री नीरज भगत। सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, गणी गणी, राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती FM एंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: प्रीत गैम्बलर इस फिल्म का गीत सुना रहे हैं। आवाज अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, शरद कुमार और साथियों की है। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।
1: Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando,

0: ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, शरद कुमार और साथियों की आवाज़ें थी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में जहर फिल्म से, सईद कादरी के बोल, रूप कुमार राठौर का संगीत।

0: श्रोताओ, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे जहर फिल्म का गीत। संगीत था रूप कुमार राठौड़ का, गीत को लिखा था सईद कादरी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण का संगीत

और अब आपको सुनवा रहे अनुराधा पहुंचवाल अमित कुमार और साथियों की आवाजों में तेजाब फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में आप सुन रहे थे द जेंटलमैन फिल्म का गीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के।

शुदा उदेजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अमित कुमार, अनुराधा पोटवाल और साथियों की आवाज़ थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, जावेद अख्तर के बोल थे।

के और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, जलील शिरवानी का लिखा गीत है, साजिद वाजिद का संगीत, फिल्म का नाम द किलर।

श्रोताओ, अगला गीत आप सुन रहे हैं अनुराधा पौंचवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। उससे पहले आप सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत, आवाज थी अरिजीत सिंह की। दिल फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का।

तो इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं खत्म हुआ। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आप सुनिए विधानसभा समीक्षा, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामे के बीच गुजरा। इस दौरान ना तो प्रश्नकाल हुआ और ना ही शून्यकाल सुचारू चल सका। हालांकि शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों को विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी विषय वस्तु रखने का मौका मिला। वहीं कुछ विधायकों ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए अपनी बात सदन के सामने रखी। प्रश्नकाल और शून्यकाल में

हुए हंगामे के कारण सदन दो बार स्थगित हुआ। भोजन अवकाश के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अनुपूरक मांगों के साथ ही विधायी कार्य करवाने का प्रयास किया। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए सदन और चला। आखिरकार दोपहर 1:45 पर विधानसभा को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल की शुरुआत करने लगे तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हुए और उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद मौका दिया जाएगा, लेकिन श्री जूली अपनी बात पर अड़े रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आज उसी गेट से आने दिया गया जिस गेट से कल नहीं आने दिया था। टीकाराम जूली ने अध्यक्ष देवनानी को कहा कि पिछली बार जब वे विधायक थे और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो विरोध करते हुए वे लोग भी उसी गेट से प्रवेश करते थे। श्री जूली ने कहा कि वे प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब वह बाहर थे तो सदन में उनके खिलाफ अनर्गल बातें बोली गई जो सरासर गलत है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगी। तभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सदन में ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को कहा कि वे सदन में आकर अपनी बात नियमों के तहत कहे। इसी दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने एक बार फिर सभी को अपनी अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। जब कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर नहीं गए तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। करीब 5 मिनट तक जोरदार हंगामा हुआ। ऐसे में सुबह 11:05 पर सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मंत्री श्री दिलावर के इस्तीफे की मांग की। तभी श्री देवनानी ने सभी से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। उसी दौरान सभी कांग्रेस विधायक फिर से वेल में आ गए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि स्पीकर श्री देवनानी ने शून्यकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, अशोक भंडारी और मनोज कुमार ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि हंगामा काफी ज्यादा था तो सदस्य अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए और हंगामे तथा शोर के बीच जनता से जुड़े उनके मुद्दे गौण हो गए। इस दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने सभी को अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक वेल में ही डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:15 सदन को करीब 45 मिनट के लिए दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष की वेल में नारेबाजी जारी रही। इस दौरान हंगामे के बीच ही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। इसके बाद आगामी कामकाज की शुरुआत हुई। इस दौरान विधायक अतुल भंसाली ने विशेष अधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2026-2027 के सभापति की ओर से प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। ये प्रतिवेदन विधायक डॉ. सुभाष गर्ग के खिलाफ पेश विशेष अधिकार हनन से जुड़ी प्रस्ताव के संबंध में था, जिसमें प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत तिथि को आगामी सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की गई। इस पर सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष का विरोध वेल में जारी रहा। इसके बाद सदन की मेज पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर ने अलग अलग विभागों की अधिसूचनाएं मेज पर रखी।
इसी बीच जब

0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से नाम पुकारा गया तो विपक्ष ने और भी तेज नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, साथ ही कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए। श्री दिलावर के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने अपने विभाग की अधिसूचनाएं टेबल की। इस दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी खत्म नहीं हुई तो विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सब देख रही है, जनता ने जिस काम के लिए भेजा है वह काम आप नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहा कि उन्हें सभी के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने सभी से अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। श्री देवनानी ने ये भी कहा कि सभी लोग सीट पर जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी और वेल में ही डटे रहे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने अपने अपने विभाग से जुड़े वार्षिक प्रतिवेदन रखे। इसके बाद समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया। इस दौरान हंगामे के बीच विधायी कार्य शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से रखा गया। अब इस बिल को बाद में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। जब यूसीसी बिल पेश हुआ तो भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उन्हें सदन में जनता के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिल रही है। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि पहले वित्त से संबंधित अनुदान की मांगों को पारित होने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अपना बिजनेस पूरा करना चाहती है, लेकिन जनता के मुद्दों का क्या होगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके जाने की घोषणा की। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक 1:21 पर सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके चले गए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विनियोग संशोधन विधेयक का पुनरुत्थापन किया। कांग्रेस के बॉयकॉट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में कहा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है। मीडिया के सामने उन्होंने गलत बयानबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से भागने का काम किया है। सदन में वे किसी भी विशेष मुद्दे पर नहीं बोले। राजस्थान की जनता सब देख रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा कि वह भी इस घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सदन के सामने रखे ताकि जनता को पता चले कि कल क्या हुआ था। इस पर श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा का गेट आज भी खुला है और कल भी खुला था। विधायकों के लिए गेट नंबर 6 सिर्फ पैदल एक एक करके आने वालों के लिए खुला रहता है। समूह में विधानसभा के गेट से आने की अनुमति ना पहले थी और ना ही आगे होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए गेट गुरुवार को भी खुला था, लेकिन गुरुवार को एमएलए समूह में आए तो उन्हें रोका गया। इसका कारण ये है कि पिछली बार जब सत्र के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो विधायकों के बीच ही 2 बाहरी लोग भी घुस गए। हालांकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने पहचान कर बाहर निकाल दिया। ऐसे में समूह में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। श्री देवनानी ने कहा कि मार्शल ने उन्हें जानकारी दी कि विधानसभा के गेट पर गुरुवार को 2-3 लोग चढ़ गए। ये नियमों के हिसाब से अवांछनीय है। उन्होंने अपील की कि भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। इसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ और दोपहर 1:45 पर सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू,

अनुपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं, और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, उसके बाद न्यूज एट 9, फिर उर्दू में समाचार और उसके बाद करंट अफेयर्स। इन कार्यक्रमों को हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में गफरुद्दीन मेवाती और साथियों के गाए लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम

0: फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: श्रोताओं, लोक संगीत में आप सुन रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती और साथियों के गाए लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे गफरुद्दीन मेवाती और साथियों के गाय लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी

0: ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी।

0: दिल्ली से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
2: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य

0: की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम

0: का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwini Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मुगल-ए-आज़म फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई।

1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाए गीत सुनने वालों को अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी के इस चढ़ते उतरते सफर में अचानक किसी का यूं मिल जाना कि लगे जैसे न जाने कितनी सदियों पुराना है ये रिश्ता हमारा। दुनिया की भीड़ में इधर हटकर उधर हटकर ये नजरें बस उसी चेहरे को देखना चाहती हैं, वो शख्स जो जाना पहचाना लगता है, मिला तो बस अभी अभी, फिर क्यों एक अजनबी सी कशिश होती है। लफ्जों से भी ना बोला अब तक वो, बस आंखों से कुछ बयां होता है। दो जोड़ी आंखें जब मिलती हैं तो वक्त थम सा जाता है। हम हैं यहां इस वक्त, पर यादें एक जहां घूम आती हैं। हां,

यही वो चेहरा है जिसे तलाश रही थी अब तक मैं, यही तो चेहरा है जिससे नूर बरसता है, वो चेहरा जो किसी चांद से कम नहीं चमकता।

जिसका साथ हो गुनगुनी धूप सा, आंखों में सुबह शाम उसी का ख्वाब उतर आता है, पास ना होते हुए भी हर पल उसका ख्याल घेरे रहता है, जब वो ना हो तो इंतजार उसका, जब कभी करीब पाऊं तो वो मौन हमारा। सचमुच कितना प्यारा है ये साथ तुम्हारा, वो जो हम कुछ कहते कहते एक ही शब्द पर ठहर जाते।

लगते हैं ना, थोड़ा रुक जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, बस वो एक पल मोहब्बत में घुला हो जैसे हम एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हों जैसे।

कभी सोचा है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? सबसे प्यारा है उसका एहसास, वो एहसास जो किसी की हंसी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसे उदास देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, लव्स जहां चुप हो जाएं, उसकी खामोशी पूरी दास्तां कह जाए, वो उसकी प्रतीक्षा जिसमें शिकायत कम और दुआएं ज्यादा हो, वो आंखें जो अपने आप में समाए हैं मेरा पूरा संसार, जिसके बस पास आते ही मौसम बदल जाते हैं।

अंतराल के इस पार आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उस गगन पर चमकते चांद को देखा है कभी गौर से? तुम हो वो चांद मेरे लिए। चांद तो एक है और तारे अनगिनत। इसीलिए तो चांद इतराता है, इठलाता है। उस चांद के सबसे करीब वो जो एक छोटा सा सितारा है ना, बस मैं वो सितारा बनना चाहती हूँ तुम्हारे सबसे करीब और सबसे खास।

तुम्हारी बाहों में आते ही जीवन की सारी थकावट बिखर जाती है, बेचैन सांसों को चैन मिल जाता है, हसरतें सर उठाती हैं, सपने महक जाते हैं, वक्त ठहर जाता है, मन प्यार की धुली चांदनी में शीतल हो उठता है। सच मानो सबसे महफूज जगह तुम्हारी बाहों की पनाह है मेरे लिए।

मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी सबसे प्यारी याद है। जैसे पहली बारिश याद रखती है सूखी जमीन को, जैसे पहला सपना याद रहता है मासूम से मन को, तुम रच बस गए हो मेरी रूह में। सुकून हो तुम मेरा, बसेरा।

आज का छायागीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद।

0: नाम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध

0: हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।